0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:04 हो रहे हैं और प्यार की वादियों में म्यूजिक का दामन पकड़ते हुए बस दिल का पुकार दिल की पुकार आप तक पहुंच रही है. विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम. कैसे हैं? ठीक ठाक. ऑलरेडी 1st of July. अरे बाप रे बाप, 7वां महीना. टाइम इज फ्लाइंग, टाइम इज फ्लीटिंग. लेकिन जब तक आप हो ना साथ में तब तक पता भी नहीं चलता है कि वक्त कितनी आराम से गुजर जाते हैं. लेकिन आप आराम से उठिएगा क्योंकि सुबह का टाइम है एंड अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए आप अगर सज है तैयार है तो नीतू भी आपके साथ तैयार टिल 7 AM इन योर राइज एंड शाइन. योर मैसेजेस व्हाट्सएप सैकात नफ नफ दोज नफ कात किसी के नाम या फिर अपने नाम कोई पैगाम तो सैकात नफ नफ दोज नफ कात पर नीतू आपका इंतजार कर रही है.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हर पर ऐसा जियो जैसे आखिरी हो, गाना तो है लेकिन सच्ची बात भी है। 5:11, अच्छा कैसे हैं, ठीक ठाक? योर मैसेजेस ऑन 9:09:09. गुड मॉर्निंग आपको, धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार, मौदाल बैसे, कैसी हैं आप? अमृता फातु साबले से, एंड बस आपके नाम पूरे परिवार के लिए अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर जयशन एंड आपके सभी परिवार के लिए। तो ज्योति भी है शातु बिनागस से, आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार, एंड स्टे ब्लेस्ड, हमेशा सलामत रहे, स्टे सेफ।

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Really hope इन गानों के जरिए आपकी नींद जो है धीरे धीरे प्यार से खुल रही है और इस नए दिन की शुरुआत करने के लिए एकदम लाइक रेडी भी हो रहे हैं. कभी कभी मूड भी खराब हो जाता है लेकिन एक प्यारा सा गाना आपके मूड को अपलिफ्ट कर जाए और पूरा दिन अच्छे से बीत जाए. 5:20 काफ़ी मैसेजेस हैं ऑन 5499-1294. हेलो जी, मैं वर्षिनी हूँ पिछले से और डेडिकेट करना चाहते हैं अगला गाना टू योर पापा और इनका बर्थडे.

भी हैं तो चलिए पापा जी को हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं आपको पूरे परिवार की ओर से। यहाँ पर है प्रणाम भाई सूरज शर्मा एंड सजादा परिवार। गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या? ओ कविता, आप ही हो, कैसे है, ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग रेडियो मास्टर अब्दुल अंसारा बानू, हैव अ नाइस डे अहेड। साथ ही साथ इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजु, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोताई, ब्लॉश से सब परिवार एज यूजुअल। प्रणाम नीतू, प्रणाम शीला जी, कैसी हैं आप? लेस्पेरेंस ट्रेबुशे वालों, ठीक ठाक सब कुछ? और मौसम कैसा है आपके यहाँ? इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजु, कृषा, ओके फिर से आपका मैसेज आ गया है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग नीतू, हाउ आर यू डूइंग? एंड बस आप कहना चाहती हैं आई लव माय हबी ईश्वर, ऐसा ही होना चाहिए। एंड वो भी बहुत बहुत, कब वो वापस आएंगे काम पर? और ड्यूटी पर है, नाइट ड्यूटी, तो बस तब तक प्रिया माय डियर इन गानों का मज़ा लेते चले और शायद वो भी सुनते सुनते घर वापस आ जाए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर। आप है कौन यहाँ पर? मिस्टर ललित मोहन भट्ट, एंड आप इंडिया से हो, थैंक यू सो मच। प्रणाम साधना, मुकेश एंड फैमिली, आप हो फ्रॉम लालमाची। और यहाँ पर है कौन? रेखा, एंड आपके पूरे परिवार को भी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।

0: हम तो जब से आए हैं आप ही के पास है, आपके घर में, आपके दिल के करीब.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.

0: रेडियो मस्ती।
1: शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। कभी भी सुबह हो शाम हो रात हो व्हाटएवर यू माइट बी यू आर वेल ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती। 5:35 ओके माने कि बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप। गुड मॉर्निंग रेशमा रामजतन, आप हो फ्रॉम प्लेन दे रोश। कहते हैं प्लीज नेक्स्ट गाना गुजार टू माई हबीबी राज, मासीता, पापा देवन, दीपा, रति, ओजस्वी, बॉबी, किशन, साथ में सचिन एंड लविश एंड ऑफ कोर्स आपके सभी डियर वंस के नाम। प्रणाम जी, कैसे हैं आप? आप हैं मिस्टर संजय बंधु सेंचुरी विलेज से। जय हो, बस सुनते रहे आप एंड गाना आपके लिए और बंधु परिवार के नाम। ओम श्री गणेशाय नमः। हाउ आर यू नीतू? आई एम डूइंग वेल। हैप्पी वेडनेसडे आप सभी को। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, ओके, आप चुस्कियाँ लेते रहें एंड एंजॉय करते रहें। सुया बिहारी कंगुमा से आपके लिए एंड योर वांस। गुड मॉर्निंग नीमा जीवन फ्रॉम मोदालबेया, कैसी हैं आप? पति के लिए खाना तैयार कर रही हैं, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह एंड गाने आपको मस्त लग रहे हैं, थैंक यू। सुहाबी विशाल के नाम आपके 3 बेटे हैं, यादव, नीलेश एंड वीरेश एंड टीम के नाम थैंक यू सो मच माई डियर। गुड मॉर्निंग नीतू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ प्रेमा जी। आप हो फ्रॉम पुत्रो दो एंड बहुत ठंड है। आप सोचो पुत्रो दो में ठंड है, इधर आओ ना मुका क्यों पिवाकवा तब पता चलेगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग आपको। गण गणपते नमः। हेमलता भजन, आप हो फ्रॉम पोएतो पिमा एंड विशिंग ऑल शुभ दिन। गुड मॉर्निंग ओशनुआ वालू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, एंजॉय रहे, एंजॉय करें, मस्त रहे।
2: जिस

0: अभी तक तो मैं ही हूँ।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: फटाफट शुरुआत करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
0: आज का दिन आपके लिए संतोष, सफलता और खुशियों की मधुर सौगात लेकर आया है। व्यापार से जुड़े आपके प्रयास रंग लाते दिखाई देंगे और किसी योजना से अच्छे लाभ मिलने के भी संकेत हैं। यदि आप संतान की किसी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे तो आज वो खबर आपके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान भी ला सकती है। माने कि प्रेम, परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: वेल आज अभाग्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे मन हल्का और प्रसन्न महसूस करेगा। शेयर बाजार या फिर निवेश से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्साहजनक संकेत दे रहा है। परिवार में किसी शुभ कार्य या फिर विवाह की चर्चा पूरे घर को उत्साहित कर भी सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: वेल आज का दिन धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है, लेकिन अंत में राहत भी देगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई सरकारी कार्य पूरे होने की दिशा में बढ़ रहा है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच विचार समझकर डिसीजंस लें, क्योंकि उधार या फिर लेन देन से जुड़ा कोई विषय सामने भी आ सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: ऑलराइट, आज का दिन शांत और संतुलित ऊर्जा लेकर आया है। यदि वैवाहिक जीवन में पिछले दिनों कुछ खटास या फिर गलत फहमियाँ थी तो अब रिश्तों में फिर से मिठास लौटते दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ हुई चर्चा आपको नई दिशा दे सकती है और यहाँ पर आपके लिए कहा जाता है कि निवेश से जुड़े मामलों में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में जाती दिखाई भी दे रही है।
2: लियो सिंह राशि,
0: आज आपके व्यक्तित्व का तेज चारों ओर आकर्षण का केंद्र बन सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिस कार्य में आप आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना प्रबल है और संतान की प्रगति आपके लिए गर्व का विषय भी है। बस स्वास्थ्य के छोटे संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि समय पर ध्यान देना भी भविष्य की परेशानी से बचा सकता है।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: वेल आज आपके सामने नए अवसरों के कई द्वार खुल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। कार्य से जुड़ी यात्रा भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपके मन में कुछ नया और अलग करने की इच्छा जागेगी, जो भविष्य में सफलता की मजबूत नींव बन सकती है।
2: लिब्रा तुला राशि,
0: वेल या पर आज का दिन प्रगति आकर

0: दर्शन और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आया है। अगर यदि बात करें स्वास्थ्य की तो चिंताजनक भी हो सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। वैसे आर्थिक स्थिति में सुधार और धन लाभ के संकेत हैं। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उसे निभाने का अवसर आपको मिलेगा और इससे रिश्तों में मजबूती आएगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपको हर कदम सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजंस बाद में सुधार की मांग कर सकता है। व्यवस्था अधिक रहेगी लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जरूरतें जो हैं पूरी होती दिखाई देंगी। जीवन साथी के लिए कोई उपहार या विशेष खरीदारी रिश्तों में नई मिठास खोल सकती है। बस खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि अनावश्यक खर्च भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर भी सकते हैं।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: वेल आज सकारात्मक एनर्जी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दे रही है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर करें क्योंकि छोटी सी लापरवाही परेशानी खड़ी कर सकती है। सरकारी नौकरों कार्यों में यानी कि समय से पूरा करने के आप प्रयास करेंगे, इससे भविष्य की कई दिक्कतें टल भी जाएंगी और माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक जैसे कहते हैं साबित हो सकता है और कोई रुकी हुई डील भी अचानक आगे बढ़ सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज व्यापार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत उत्साह बढ़ाने वाली हैं। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील अब पूरी हो सकती है और इसका लाभ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य से किया गया वादा निभाना जरूरी होगा क्योंकि आपकी बात का उनके जीवन में विशेष महत्व है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन नई जानकारियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। यात्रा या किसी मुलाकात के दौरान मिली एक महत्वपूर्ण सूचना भविष्य में बड़ा लाभ भी दे सकती है। दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा और भागदौड़ भी बनी रहेगी। कोई व्यक्ति आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए अपने डिसीजंस में सतर्कता रखें।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज मेहनत और समर्पण आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। बड़ों के साथ जो है संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी और उनके साथ बिताया गया समय आपको भावनात्मक रूप में मजबूत बनाएंगे। हालांकि बिना वजह क्रोध करना आपके रिश्तों को प्रभावित भी कर सकता है, इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी लाने का प्रयास करें। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड अ लवली डे अहेड।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे हम होते हैं बाकी सब भी ऐसे हो, हमारी सोच जैसी हो बाकी सबकी सोच भी ऐसी हो. लेकिन हाँ, जो भी हो, जैसा भी, कौन क्यों ना हो, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले, अपना काम अपने कर्म करते चले. बी गुड टू गुड. 5:54 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: छह बजे हैं. सुबह का पहला फ्लैश न्यूज सुनते हैं आप सभी दिमाग. नमस्कार.
6: नमस्कार नीतूषा. सभी सुनने वालों को नमस्कार. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है. इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी. समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी. पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं.

0: करनी होगी। आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होगा, जिसका पालन न करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पत्रकार से आवेदन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपये बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपये पुराने बकाया शामिल है। 30 जून 2025 को समाप्त वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपये का घाटा दर्ज किया। मंत्री ने बताया कि पानी की उत्पादन लागत 24 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि औसतन बिक्री 14 रुपये में होती है, जिससे 10 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर का नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी की दरों में संशोधन होगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं होंगी। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। इनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं, जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार मामलों का आकलन करते हैं। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। फुटबॉल की दुनिया में किलियान एम्बापे ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पैराग्वे से होगा। और लाहौर के पास एक निजी ट्यूशन सेंटर की इमारत की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहत कार्य जारी है और अधिकारियों ने जाँच शुरू करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह देश के दक्षिणी ढलानों और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, तटवर्ती इलाकों पर 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर और आज शाम 5:41 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
4: Radio Musty.

Yes, you're well tuned to your favorite radio station, Radio Masti, पर आपका once again स्वागत. And 6:10 already हो चुके हैं और यहाँ पर आप

के मैसेजेस भी. थैंक यू पुत्र दोस्त अंजनी जी एंड ब्लेस्ड वेंसडे टू यू ऑल. अ वेरी गुड मॉर्निंग उषा जी, आप हो फ्रॉम मेबर्ग. ये गाना आपके नाम, मैं तो बोलती हूँ सब गाने आपके लिए. 64th बर्थडे आपके नाम है पापा क्रिस, हैप्पी बर्थडे आपको. वाइफ प्रीति, तीन बच्चे आकाश उर्वशी विश्नी, जीजू अविनेश, पोता केहान, मनसुख परिवार बॉम्बू से आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं. लवली गाने, थैंक यू सो मच. आप है कौन? ओके, आप ही हो रेखा. गुड मॉर्निंग आपको धनेश्वर जी, प्यारी पत्नी सुनीता है साथ में, मीना, ऋषि, तहान, हंस वी, संजीव, निशा, दाविद उस परिवार, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. कैसी है वृंदा बंगारू फ्रॉम होसबेल, आज आशा कमादू एंड ओके, और उनको बेस्ट विशेज, जैसे कहते हैं गागुशों, एंड तो चलिए आपके लिए है, और बेस्ट विशेज उनके पूरे परिवार की तरफ से भी. तो ये गाना स्पेशली गोज आउट टू ऑल द लवर्स ऑफ द 90s.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई अच्छा गाना चल रहा हो तो उसमें हम भी डूब चले जाते हैं. ललिता एंड जीतन फैमिली, गुड मॉर्निंग. हाय रेडियो मस्ती टीम, गुड मॉर्निंग आप सभी को भी. और यहाँ पर डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू दी अंजो, और आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं एंड बस उनको बहुत मिस कर रहे हैं. पापा धनराज, मामा संध्या, फैमिलीज क्वीन विक्टोरिया से एंड पुलिस फोर्स में है, ट्रेनिंग ले रही हैं. बेस्ट ऑफ लक, बस ऐसे ही अपना और सबका ख्याल रखिएगा. थैंक यू रेखा. अंश पोंबोजो से हैं साथ देने के लिए. एंड आपके लिए भी बेटी दर्शिनी, आज आपका ग्रेजुएशन डे है, सो कंग्रेचुलेशंस. एंड मामा देवीना, पापा देवानंद, दुर्गा परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. बेस्ट विशेस टू एशिव एंड क्लारा लुबों ऑफ रीन इन आयरलैंड गेटिंग मैरिड टुडे. इवान, इनाया, रवेश, प्रिशा, लव शांडिया वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार. नेक्स्ट गाना आपके नाम सोनम भोला आपके लिए, और दिल था अकेला वाला गाना अच्छा लगा, थैंक यू. एंजल अभिशास, वीनी मोम, लिटिल गर्व, मयांसी और आपके सभी परिवार के लिए. बस ये गाना हमें ले जाएगा 6:30 बजे के समाचारों की ओर, और फिर उसके पार 7 बजे के बाद वेदिता के संग मॉर्निंग बीट.

नमस्कार, पहली जुलाई 2026 बुधवार का दिन। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश की किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। ऊर्जा मंत्री पत्रकासिया वादन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया शामिल हैं। 30 जून 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना है।

0: भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की जी2जी समझौते पर बातचीत जारी। एसटीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रैक लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। किलियान एम्बापे ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पराग्वे से होगा। और लाहौर के पास एक निजी ट्यूशन सेंटर की इमारत की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहत कार्य जारी और अधिकारियों ने जाँच शुरू करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राज्यसभा में बहस किया गया। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। प्रमुख कदमों में से एक ये है कि अब कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकेगा। पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि वे शिकायत दर्ज करें और घटना कहीं भी हुई हो बिना किसी देरी की जांच शुरू करें। ये विधेयक अदालतों के लिए आरोपी को समन भेजने की समय सीमा को 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का भी प्रावधान करता है। साथ ही हिंसा के आरोपी के व्यवहार का आकलन करने के लिए सुरक्षा आदेशों यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की समीक्षा हर 3 महीने में की जाएगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेंडर इक्वालिटी तथा परिवार कल्याण मंत्री आर्याना वोमारी के भाषण का एक अंश पेश है। विवरण याचना मिश्रा का है।
1: En cas de manquement à une ordonnance d'abus domestique signalée à un poste de police, l'officier responsable du poste indépendamment.
2: यदि किसी पुलिस स्टेशन पर दर्ज घरेलू हिंसा का कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो तो उस स्टेशन के अधिकारी को हिंसा की शिकार महिला का रिपोर्ट दर्ज कराना ही होगा, चाहे ये हिंसा कहीं पर भी हुई हो, चाहे रिपोर्ट लिखने वाले का पता कहीं का भी हो। बिना समय गवाए जांच जारी की जानी चाहिए। महिला कहीं पर भी जाकर किसी भी जगह के पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इससे पहले हिंसा का शिकार जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में जाता था, यदि वो उसका इलाका न हुआ तो उसे वहां से भेज दिया जाता था। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल को 14 के बदले अब 7 दिनों में ही आरोपी को पेश कराना होगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर की अवधि वर्तमान कानून में 2 सालों का है, लेकिन धारा 8(4) के अनुसार ट्राइब्यूनल अब से हर 3 महीने में एक जांच की मांग करेगा, ताकि हिंसा करने वाले के बर्ताव पर नजर रखी जा सके।
1: Le tribunal, au moment d'émettre l'ordonnance, demandera un réexamen périodique tous les 3 mois pour évaluer le comportement de l'auteur des violences.
0: डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। घरेलू हिंसा के मामलों में अब पीड़िता को अपने घर और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये जिम्मेदारी आरोपी की होगी। अदालत आरोपी को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकती है या उस पर पीड़िता के लिए वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने की बाध्यता लगा सकती है। ये विधेयक हिंसा करने वालों के पुनर्वास के लिए भी कदम निर्धारित करता है। अदालत मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य करने का आदेश दे सकती है और इस निर्णय का पालन न करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2: यदि साथ रहना मुश्किल हो तो हिंसा करने वाले को घर या फिर उस जगह से जाना पड़ेगा और न कि हिंसा के शिकार व्यक्ति को। धारा 13(4) के अनुसार महिला को अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, घर बार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके या उसका साथ ही हिंसक हैं। ट्राइब्यूनल हिंसा करने वाले को हिंसा के शिकार व्यक्ति को बसेरा प्रदान करने का आदेश दे सकता है। जिसने खतरा पैदा किया है या उसे बढ़ाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है और न कि खतरे में जी रहे व्यक्ति की। एक इंटरवेंशन ऑर्डर भी जारी होगा जो हिंसक व्यक्ति के बर्ताव में सुधार के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि यदि व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो बाद में ऐसा ही बर्ताव करेगा। ट्राइब्यूनल मंत्रालय के साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक मानसिक परीक्षण की मांग भी कर सकता है।

0: चाहें प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ इंटरवेंशन ऑर्डर जारी करने का अधिकार भी अदालत को होगा, जिससे हिंसक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एक प्रोग्राम के तहत अपने बर्ताव पर काम करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति अदालत में पेश न हो तो इसके लिए जुर्माना ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का है।
1: Le manquement à comparaître est passible d'une amende n'excédant pas 50,000 roupies.
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए का बकाया है, जिसमें से 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया यानी आरियर्स के रूप में है। ये आंकड़े कल मंगलवार 30 जून ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन द्वारा सांसद अविनाश राम कलावन के एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में संस्था के वित्तीय स्थिति के बारे में साझा किए गए। मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि 30 जून 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया है। इस स्थिति के मुख्य कारणों में जनवरी 2012 के बाद से पानी की दरों में संशोधन न होना और बिजली की बढ़ती लागत आदि शामिल है। मंत्री पत्रिका सेवादेन को सुनते हैं।
0: CWA ने सूचित किया कि 25 जून 2026 तक ठेकेदारों, अन्य संस्थाओं, सप्लायरों के लिए बकाया रकम 697 मिलियन रुपए की है। इसमें से 470 मिलियन रुपए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिए जाने बाकी हैं। ये कुछ सालों का बिजली का बिल है जो जमा हुआ है।
2: मंत्री पत्रिका सेवादेन ने आगे बताया कि एक क्यूबिक मीटर पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए है, जबकि CWA को बेचे गए प्रति क्यूबिक मीटर पानी से औसतन केवल 14 रुपए ही प्राप्त होते हैं, जिससे प्रति क्यूबिक मीटर 10 रुपए का घाटा होता है। मंत्री ने पुष्टि की कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों के लिए पानी की दरों में संशोधन आने वाले महीनों में किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस कदम से बाहर रखा गया है। उनको सुनते हैं।
3: Je souhaite également attirer l'attention de cette assemblée sur le cas de certaines entreprises.
0: मैं सभा का ध्यान उन संस्थाओं की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जो CWA का पानी का प्रयोग कारोबार के लिए करते हैं। कुछ मामलों में एक बोतल के पानी का दाम असल में 3 से 5 सेंट का ही होता है, लेकिन हम जानते हैं कि मंडी में पानी की बोतल का दाम क्या है। तो ये सवाल करना जायज है कि ऐसी कंपनियां किस प्रकार जनता के लिए पीने योग्य पानी को बेच रहे हैं। पानी के प्रयोग को लेकर कोई असमानता न हो, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है।
2: समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिन्हें एक साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया है। इन डॉक्टरों के अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए थे। ये जानकारी कल राज्यसभा में सांसद आश्रय रामदास के एक प्रश्न के उत्तर में संबंधित मंत्री अशोक सुभो ने दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये डॉक्टर कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत हैं। उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जाँच करना और दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। अशोक सुभो ने यह भी कहा कि इनमें से कुछ चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में भी बैठते हैं। वे आवेदकों के मामलों का मूल्यांकन उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार करते हैं।
4: In the medical board, these are medical practitioners.
0: मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवर ही बैठते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। कानून में ये अनिवार्यता है कि मेडिकल ट्रिब्यूनल में बैठने वाले डॉक्टर को मामले के अनुरूप उसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होना चाहिए।
4: The respective specialist of the case being assessed.
2: राज्यसभा में ही मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर हो रही G2G यानी सरकार से सरकार समझौते पर भी चर्चा हुई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन साल की शुरुआत से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्री माइकल सिक्वेन ने कल सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की कि जुलाई के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल है 5 साल का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट, मूल्य निर्धारण, मुद्रा संदूषण संबंधी क्लोज और मात्रा में छूट की शर्तें। मंत्री ने स्वीकार किया कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति और पिछले कुछ महीनों में समुद्री फ्रेट की लागत में वृद्धि के कारण बातचीत

0: में देरी हुई है। अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ संभावित समानांतर वार्ताओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार भारत के साथ प्रतिबद्धता हो जाने के बाद कहीं और बातचीत करना न तो उचित है और न ही नैतिक। हालांकि माइकल सिक्वेन ने यह भी कहा कि इस बीच देश में पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री माइकल सिक्वेन को सुनते हैं।
1: प्रस्तावित G2G समझौता मॉरिशस को रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होगा, वैश्विक संकटों के दौरान सप्लाई को लेकर ज्यादा स्थिरता आएगी, अदायगी के लिए ज्यादा आसानी होगी, दीर्घकालिक अनुमान, प्रेफरेंशियल बर्ताव और तकनीकी सहयोग तथा क्षमताओं का विकास भी होगा। हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि मंडी में स्थिरता वापस न आए और दाम नियमित न हो।
2: We have to wait for some time till the international market stabilizes and the price volatility normalizes.
0: अन्य खबरों में, सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। ठंडी हवाएं, घर के अंदर चलने वाले हीटर और शुष्क वातावरण हमारी आंखों की नमी को सोख लेते हैं, जिससे आंखों में जलन, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें और कौन से उपाय अपनाएं, इस पर अधिक जानकारी डॉक्टर विदेश तूफानी दे रहे हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण याचना मिश्रा का है।
3: Et en ce moment-ci, quand on a un changement des temps comme ça, nous gagnons une conjonctivite virale un petit peu à la hausse.
1: जब मौसम बदलने लगता है तो कंजंक्टिवाइटिस के मामले काफी बढ़ जाते हैं। परिवार में एक, दो, तीन सदस्यों को ये होता है तो वे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज पाने जाते हैं। सावधानी जरूरी है, हाथ को साफ रखना, आंखों को न खुजलाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना ताकि संक्रमण से लड़ा जा सके।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन FCC के महानिदेशक तित्रुदेव दाऊदारी ने मॉरिशस फुटबॉल के प्रबंधन और उसके प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। बोट्स की भूमिका पर समर्पित एक फोरम के दौरान 30 जून 2026 उन्होंने केप वर्दे का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि केप वर्दे एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या मॉरिशस की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफाई किया है बल्कि वहाँ अपने देश का गौरव भी बढ़ाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मॉरिशस में फुटबॉल के क्षेत्र में भारी निवेश किए जाने के बावजूद देश अभी तक उस स्तर का प्रदर्शन क्यों नहीं हासिल कर पाया है। उनके अनुसार संस्थानों के भीतर जिम्मेदारियां उन लोगों को सौंपी जानी चाहिए जो सक्षम और योग्य हों।
1: रुआंडा, कैप वर्द, बोत्सवाना और सेशेल्स, आप ही सवाल पूछें कि ये सभी देश हमारे ऊपर क्यों हैं? क्योंकि वहाँ जो संचालन करते हैं बोर्ड और संस्थाओं में, उन्हें एहसास है कि उनके हाथों में देश की जिम्मेदारी है। इतना निवेश स्पोर्ट्स पर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम वर्ल्ड कप के लिए कभी क्वालिफाई नहीं हुए, जबकि कैप वर्द, जहाँ की आबादी हमसे आधा कम है, वे दिल से देश के लिए खेल रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं। ये कई साल पहले से किए गए कार्यों का परिणाम है। वे अपने देश के लिए कटिबद्ध हैं। उनकी सोच ही हर स्तर पर अलग होती है। CBI में भी हमसे वे आगे हैं, कोई चौंकाने वाली बात ये नहीं।
0: अब फुटबॉल की बात करें तो किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर एक तरफा जीत दर्ज की और अंतिम 16 के दौर में पाराग्वे के खिलाफ अपना मुकाबला पक्का कर लिया है। उधर कल खेले गए मैच में अर्लिंग हालान ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल करके नॉर्वे को आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई, जिससे अब वर्ल्ड कप के अंतिम 16 दौर में ब्राज़ील के खिलाफ एक बेहद दिलचस्प मुकाबला तय हो गया है। और अभी मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मैच चल रहा है, जहां मेक्सिको की जीत 2-0 से हो रही है। मेक्सिको सिटी में ख़राब मौसम के कारण मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। सह मेज़बान मेक्सिको ने अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं। इस मैच का विजेता सोमवार को अंतिम 16 के दौर में इंग्लैंड या डीआर कोंगो का सामना करेगा।

और विदेश की अन्य खबरों में लाहौर के पास एक इमारत की छत ढहने से 14 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक निजी ट्यूशन सेंटर में हुई। हादसे वाली जगह से निकाले गए बच्चों में 10 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच के तहत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह देश के दक्षिणी ढलानों और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर और शाम 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादर कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बिनो अपोजिट रिविया में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री नित्यानंद सिंह नायक हरे, जो नीतीश कोलो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थिक कल गुरुवार को दिन के डेढ़ बजे उनकी माँ श्रीमती तारा नायक होरे के घर गोल्ड स्मिथ स्ट्रीट कॉम्बिनो अपोजिट रिविया से उठाकर शुबैल की शमशान भूमि ली जाएगी। Permission tomorrow at 1:30. Au route de Trébon, number 4, Vakwami, 63 saal ke, 63 years old, ke Shri Anirao Arjun Balu, jo Anirao naam se bhi jane jate the, ki mrityu ho gayi hai, unke arthi aaj subah 9 baje, unke ghar, route de Trébon, number 4, Vakwa se utha kar, 3 mamel ki shumshan bhoomi di chai jayegi. Permission today at 9 a.m. रामदीन लेन ओकुले में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्री हेमराज गुलोरी, जो जोजो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके घर रामदीन लेन ओकुले से उठाकर बिकाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 एएम। शाये रोड मोंटाइन ब्लांश में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबा लक्ष्मण, पैदाइशी नाम उबाई और जो सुबा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री यशदेव लक्ष्मण के घर शाये रोड मोंटाइन ब्लांश से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। जगन्नाथ रोड रिविया जोरोंपा में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री जयकरण बिसुन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती फामिला लोहर के घर जगन्नाथ रोड रिविया जोरोंपा से उठाकर बेलमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। केदुलेन तयाक में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड की श्री अमुगम मुथ्यान, जो सुबैन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती वानिसा मुथ्यान के घर के दुलेन तयाक से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। रा रोड पुचित जुदी में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मधुमती बिसेसर, पैदाइशी नाम हीरा और जो मधु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री धर्मदेव राकेश बिसेसर के घर रा रोड पुचित जुदी से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। कौंडीला शमें ग्रेनियर में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पावती शिवदयाल, पैदाइशी नाम भगत

गन और जो मानन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। वे पहले पॉइंट रोड सुरीनाम रहती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी श्रीमती शोभा बाहू के घर कौलीला श्रमिक ग्वेनियर से उठाकर कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सिटे नंबर D063 बुटिक यूनियन वेल में 77 साल की 77 years old की श्रीमती राधा अजोधा पैदाइशी नाम प्रातुब और जो राधा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रोशन अजोधा के घर सिटे नंबर D063 बुटिक यूनियन वेल से उठाकर त्वाबुचिक की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। सुबादौल लेन लिगी बीस बाय में 61 साल के 61 years old के श्री सुबिराज जुरामन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर सुबादौल लेन लिगी बीस बाय से उठाकर पाई की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। मामजेल जान गुडलैंड्स में 46 साल के 46 years old के श्री विश्वादत्त किस्तु जो विनोद माजो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अंजू किस्तु के घर मामजेल जान गुडलैंड्स से उठाकर बुआगोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। रारोड वाली दिपैत में 77 साल के 77 years old के श्री सोमदेव हुकुम जो सोमदेव मौसम जिले नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीता हुकुम के घर रारोड वाली दिपैत से उठाकर सिपाही भोईले वाली दिपैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जुदीवादू लेन सितियम मिल त्रियोली में 79 साल के 79 years old के श्री जयराज जोदीगादू जो जेरी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सपहर 3 बजे उनके घर जुदीवादू लेन सितियम मिल त्रियोली से उठाकर बुआ मौशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 3 PM। जुवांस दिपिने में 74 साल की 74 years old की श्रीमती परामा कृष्णामा पैदाइशी नाम नारायण स्वामी और जो रूपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल गुरुवार को दिन के 2 बजे उनके अर्थी कल गुरुवार को दिन के 2 बजे उनके घर जुवांस दिपिने से उठाकर घोन रोजाली दिपिने की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुमोरो एट 2 PM। गांधी रोड लालमाटी में 66 साल के 66 years old के श्री रवीन गजाधर जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सपहर 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती उर्बिरजा पिटकी गजाधर के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

वाकई में हर किसी को नहीं मिलता प्यार, लेकिन जिसको मिल जाता है उसको संजो कर रखे जिंदगी आबाद हो जाती है। 6:57 टाइम टू से बाय बाय, थोड़ी देर में वेदिता आ जाएंगे इन मॉर्निंग बेट। हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ, टेक केयर।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: भाई आज तो इतना हो गया कि बहुत ज्यादा हो गया जी. सुबह के 7:09 हुए हैं. वेडनेसडे 1st of July. जी हाँ, जुलाई महीने की पहली तारीख. और ये जुलाई का महीना अपने साथ इतनी ठंड लेकर आया, इतनी ठंड लेकर आया. बाय द वे, गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, कैसे हो आप? उठ गए? उठ पाए? नहीं पूछना चाहिए था, उठ पाए? इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, माय गॉड. आपको पता है, नीतू हमेशा मुझसे कहती है तुझे कभी ठंड नहीं लगती. मैं हमेशा कहती थी मजाक मजाक में, अरे नहीं, मेरा ना मगरमच्छ का स्किन है. तो आज तो सोचो, इस मगरमच्छ को अगर ठंड लगी है. आप मगरमच्छ की बात कर रहे हो? आज तो मैंने विटनेस किया कि इवन चांद जो है वो वेट कर रहा था सनराइज का. मैंने भी बोला, अरे चचा घर नहीं गए? बोला, नहीं बेटा बड़ी ठंड लग रही है, थोड़ा सा सहक लूँ फिर जाऊँगा. तो आप लोगों की अगर मौका मिल रहा है ना, अभी धूप, गर्मा गर्म धूप अगर आपको मिलती है थोड़ी सी, प्लीज़ आप लोग भी ना थोड़ा धूप में खड़े हो जाएगा. सच कहती हूँ, बड़ा मज़ा आता है.
0: RM2 Radio Musty.
2: और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लो भाई. हमारे तो हाथ पैर सब ठंडे पड़े हुए हैं.

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई हमें भी अभी सुबह जब अलार्म देखते हैं तो यही कहते हैं हाय उठना है क्या हाय हाँ बिल्कुल आज है 1 जुलाई देखो अभी लेजी वेजी मत करो उठ जाओ काम पर जाना है कितने सारे लोग अभी काम पर जाने के लिए निकल भी गए हैं कुछ लोग काम पे पहुंच भी गए हैं उनका काम शुरू भी हो गया है तो गाइस आई नो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस सर्दी के मौसम में ज़रा अपना ख्याल रखिएगा सर्दी खांसी ज़ुकाम आपको पता है ये तो ऐसे बिन बुलाए वो मेहमान होते हैं जिनको भगाना भी पड़े तो बड़े ज़िद्दी बड़े ढीठ होते हैं जाते नहीं है तो दवाई अगर आपको डॉक्टर ने दिया तो टाइम से दवाई खाना और मेक श्योर कि आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइएगा हमारी नानी दादी के जो घरेलू नुस्खे उसको अपनाएगा ज़रूर रात को सोने से पहले अगर गर्मा गर्म दूध हल्दी वाली दूध उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं बच्चों को मत बोलना हल्दी वाला दूध उसको बोले ये कोई गोल्डन मिल्क पी लेंगे बेचारे बच्चे क्या बड़े भी ऐसे हो गए आजकल चलो तो हमारा आप साथ में है और अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं आज 1 जुलाई है भाई उनके महीने का ये महीने का पहला दिन है अगर आप भी किसी को हैप्पी बर्थडे विश करके उनका पूरा महीना स्पेशल बनाना चाहते हैं उनको लुलू हाइपरमार्केट की तरफ से गिफ्ट दिलवाना चाहते हैं तो ज़रूर 5491294 पे आप मुझे उनका फ़ोन नंबर उनका नाम भेजें हम उनसे बात करेंगे और उनको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे चलिए जो लोग तैयार होने जा रहे हैं और जैसे नल खोलते हैं पता है नल खोलते हैं जब पानी आता है ठंडा आवाजें कैसे आती है पता है आपको मम्मी कहती है नहा ले बेटा और आवाज आती है चलो दिल्ली की सर्दी हम मॉरिशस में फील कर रहे हैं इतनी सर्दी क्या बात है गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू रेडियो मस्ती विनीता का साथ है आप सुन रहे हैं अ मॉर्निंग बीट

0: Show.
1: RM2. Radio Musty.
2: एंड यस यहाँ पर आप विनीता का साथ दे रही हैं. डेफिनेटली हमारे जो लोग हैं अभी सो रहे होंगे. आज काफ़ी सारे लोग हैं जिनका बर्थडे होता है और बर्थडे पे वो क्या करते हैं, देर तक सोना पसंद करते हैं. और हम हैं जो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई एक बार लाइन मिल जाए और उनसे बात हो जाए और उनके लिए गाना गा दें. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे गाने का मौका तो दो, क्यों मौका नहीं दे रहे हो. चलो कोई बात नहीं जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन फ़ोन उठाता है और किससे हम बात करेंगे और वो कौन है जो लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से लेके जाएगा यहाँ हमारी हमारा जो वाउचर है जो कि हमने बड़े प्यार से आपके लिए रखा है. तो बस हम नंबर डायल कर रहे हैं, जैसे वो फ़ोन उठाते हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं. नहीं, यहाँ पर भी लाइन कट गई, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं उनको हैप्पी बर्थडे विश कर ही देते हैं. सो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे इनसे बात करने की. वी हैव हरी प्रिया हरील, तो उनको कहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे विशेज हैं मामा रोशनी, पापा कौंत्या और साथ में उनकी सिस्टर धनिष्ठा, मौसा मौसी, संगीता दामन, प्रिया हरील, बदारू फैमिली विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हरी प्रिया. एंड आपको फ़ोन उठा लेना चाहिए था, आज मेरे पास इतना अच्छा जोक था. कोई बात नहीं, चलिए हम और आप साथ में हैं, अभी खुशी के मारे डांस करेंगे आपके साथ. डोंट फॉरगेट कि अगर आप हमें सुन रहे हैं रेडियो पे तो आपको MBC आना पड़ेगा आज नहीं तो कल अपने आईडी कार्ड के साथ टू कलेक्ट योर वाउचर. याद रखिए आज नहीं तो कल, और वो अपने आईडी कार्ड के साथ आपको कलेक्ट करना है. सो लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे और हम सब की ओर से भी.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या कर रही नीतू? अरे बोला था इस डांस को ट्राई मत कर, फंस जाएगी. हाथ पैर पता नहीं क्या कर रही है लड़की. रुक अभी आती हूँ छुड़ाने तुझे. 7:41 गुड मॉर्निंग. 1st of July वेडनेसडे का दिन है और यहाँ पर अरविंद का हम कर रहे हैं इंतजार. 1-2-3 नहीं करते हम यहाँ पर, बस इंतजार करते हैं. उनका टाइम होता है, वो आते हैं. और भाई अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है तो शायद बैठ कर भी मैच देखें. बेटा रुक, तू रुक, अभी मैं आता हूँ, रुक. ऐसा बोलते बोलते वो वेट करवाते हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ. देखती हूँ अभी क्या लेकर आए हमारे लिए. फिलहाल अभी के लिए गीतों के

खूबसूरत सफर में आपका हम वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच. दैट वाज अ ब्यूटीफुल गाना, राइट? इस गाने को सुनने के बाद ना अंदर में जितनी लेजीनेस है ना सब बाहर आ जाती है, क्योंकि इंसान जो है वो डांस करना चाहता है. वैसे ये बेस्ट मूवी का गाना है जो 2022 में आया था. ये तमिल मूवी है जिसको डब किया गया था और गाना एकदम कमाल का है. तो चलिए भाई, इसी के साथ अभी हम नेक्स्ट गाना सुनेंगे. तब तक अरविंद भी अभी अपने धुरंधर मूड में आ गए हैं. क्या हो रहा है इस लड़के को?

0: क्या बात है, मेरे लिए कॉफी, नीतू के लिए चाय. थैंक यू सो मच अरविन. और चलो भाई, यहाँ पर समय भी हो गया है. म्यूजिक बहुत अच्छा है, पता है, एकदम धुरंधर स्टाइल में आया है आज हमारा अरविन. ये चलिए जानते हैं कि अभी वर्ल्ड कप में और क्या क्या चल रहा है. थैंक यू फॉर द कॉफी, नीतू बोल रही है थैंक यू फॉर द चाय. आय हाय, क्या बात है, गाना मस्त है ना. ड्राइव कर रहे हो, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग. हाँ, चलिए तो भाई बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की ओर.
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट.
2: स्पोर्ट्स न्यूज,
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: हाँ जी अरविंद, हम तो बिल्कुल सेट हैं, बताइए क्या चल रहा है अभी वर्ल्ड कप के चलते। गुड मॉर्निंग बाय द वे।
1: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वर्ल्ड कप जारी है और इस समय चाय या कॉफी के साथ बहुत लोग मैच भी देख रहे हैं। मेक्सिको का मुकाबला इक्वाडोर से हो रहा है और अभी से कुछ मिनट पहले यानी 70वें मिनट पर मैच 2-0 था मेक्सिको के हक में। लगता है अपने अज़्टेका स्टेडियम में बाजी मार जाएंगे मेक्सिको वाले। इधर एक और मास्टर क्लास परफॉर्मेंस फ्रांस और उसके स्ट्राइकर, कैरिस्मेटिक स्ट्राइकर किलियान एम्बापे की ओर से। उधर अर्लिंग हालैंड भी हर मैच में स्कोर करता आ रहा है और नॉर्वे ने बेस्ट ऑफ 16 का रास्ता खोल दिया। फ्रांस 3 स्वीडन 0। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड खतरे में है, किलियान एम्बापे का डबल रहा, मतलब एम्बापे का ऑल टाइम लिस्ट में मेसी से केवल वो अभी एक गोल पीछे है और इस वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट के लिए दोनों बराबर 6 गोल पर है। फ्रांस का तीसरा गोल बाकोला ने स्कोर किया। फ्रांस के स्ट्राइकरों के सामने स्वीडन की टीम दंग रह गई। ऊपर से हाई स्पिरिट, यूनिटी, सब कुछ देखने को मिले फ्रांस की टीम में। माइकल ओलिजे के दो पास पर दो गोल बने। अगला मैच पाराग्वे के खिलाफ होगा। फ्रांस के लिए ब्लू जिस तरह खेल रहे हैं, बाकी टीमों को डरना होगा। नॉर्वे ने भी इतिहास रचा, पहली बार के लिए नॉकआउट में जीत हुई। वाइकिंग रो सेलिब्रेशन जारी है, मार्टिन ओडेगार्ड ड्रम पर था। नॉर्वे ने 2-1 से आइवरी कोस्ट को हराया और अपना मार्ग प्रशस्त किया अगले राउंड के लिए। विनिंग गोल और कौन, अर्लिंग हालैंड का रहा। अगला मैच एक ब्लॉकबस्टर होगा, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे। वैसे ये जो वाइकिंग रो सेलिब्रेशन ये क्या है, इस पर आपको ज्यादा जानकारियां अभी साढ़े 8 बजे वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन में देंगे। और इसी समय अज़्टेका स्टेडियम फट रहा है, रोक स्टेडियम। मेक्सिको और इक्वाडोर वाला मैच खेला जा रहा है, खराब मौसम के कारण मैच 1 घंटे बाद शुरू हुआ। मेक्सिको अपने मेक्सिको सिटी में है, अपने फैंस के सामने और 2-0 से आगे है। फर्स्ट हाफ में क्विनोनेज का एक गोल, यिमेनेज ने भी एक गोल स्कोर किया। मैच को समाप्त होने में लगभग 15 मिनट बाकी है। फाइनल रिजल्ट यहीं पर आपको देंगे। आज 6 बजे इंग्लैंड की बारी, सामने होगी अफ्रीका की बहादुर टीम कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और रात्रि के 12 बजे मिडनाइट किक ऑफ बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। कल सुबह 4 बजे यूएसए वर्सेस बोस्निया और कल रात स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया। आज के मैचों पर प्रीव्यूज और लेटेस्ट न्यूज RN2 पर 8:30 बजे स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन में जरूर सुनिएगा अभी से कुछ समय बाद। फ्रांस न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर और वेस्टहैम यूनाइटेड के बीच पोर्टुगल के इंटरनेशनल मिडफील्डर माचियस फर्नांडेस के लिए 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग डील पर मंजूरी हो गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस खिलाड़ी के पीछे था पर दाम सुनकर पीछे हट गया। अभी तक द स्पर्स नए 4 खिलाड़ियों को साइन कर चुके हैं, अब तोनाली का पीछा करेंगे। आर्सेनल भी पेरिस सेंट जर्मेन के इंटरनेशनल स्ट्राइकर ब्राडली बाकोला का आशिक है। लिवरपूल ने भी बाकोला को टारगेट किया, कल आर्सेनल के एजेंट उसे फ्रांस के साथ खेलने देखने गए थे, निराश नहीं हुए। बाकोला ने एक गोल भी स्कोर किया। विंबलडन टेनिस ओपन जारी है, सिंगल्स रिटर्न। सेरेना विलियम्स की वापसी हुई सिंगल्स में पर माया जॉइंट के खिलाफ हार गई 6-3 6-7 6-3 से, मतलब करीबी मामला था। 44 साल बाद 44 साल की है, यानी 44 year old सेरेना विलियम्स का शानदार स्वागत किया गया। 4 साल बाद सिंगल्स में कमबैक रहा। कल ईगा श्वातेक ने टाउनसेंड को हराया 2-1 के सेट पर। अलेक्जेंडर वेरेज ने ब्लॉक्स को हराया। फ्रिट्स रिबाकिना, बेरेटिनी, अनिमिसोवा, डेमिनो, मेंसिच, कोस्टिक आदि फेवरेट खिलाड़ियों की जीत हुई। आज यानिक सिनर वर्सेस बोगर्स, सिटसिपास, जोकोविच, सबालेंका, केसलेयर, सियरा वर्सेस कोको गोव, ये कुछ मेन फिक्स्चर्स हैं। क्रिकेट में इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। आयरलैंड सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में आई हुई है। उधर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची वेस्ट इंडीज को हराकर। दूसरा सेमीफाइनल कल इंग्लैंड वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।

0: चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, ले ब्लू फ्रांस के ले ब्लू आगे जा रहे हैं, रोक सको तो रोको। नॉर्वे के द वाइकिंग्स भी खतरा उनके साथ हो सकता है और मेक्सिको को कौन रोकेगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन। 8:30 बजे RM2 पर सब जवाब आपको देंगे न्यूज व्यूज रिव्यूज के साथ, सुनते रहिए।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, मिलते हैं थोड़ी देर में।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानिट एक क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावो, ला लिनिया मोडेन प्री सोक।

0: चलिए इसी के साथ बढ़ते अब हम 8 बजे के समाचारों की ओर, मिलते हैं उस पार टू कंटिन्यू विद आवर मॉर्निंग बीट.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
5: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: 8 बजे हैं.

नमस्ते। आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ित की सुरक्षा की मजबूत कर तय करते हैं। देश के कोनो भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करल जा सकी। समन 7 दिन में जारी हो और सुरक्षा आदेश के हर 3 महीना में समीक्षा करल जाए। ऊर्जा मंत्री पत्रकार सेवादन के अनुसार सिरवलियो परी राज्य के लगभग 3.47 बिलियन रुपया बकाया बाटे, जिमें 2.92 बिलियन रुपया पुराना बकाया शामिल बा। 30 जून 2025 के समाप्त वित्तीय वर्ष में सिरवलियो 755 मिलियन रुपया के घाटा दर्ज कर ले बाटे। मंत्री बतैलन की पानी के उत्पादन लागत 24 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर बाटे, जबकि औसतन बिक्री 14 रुपया में होवेला, जिससे 10 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर के नुकसान होवेला। वो ई भी बोलेलन की व्यावसायिक उपयोग खातिर पानी के दर में संशोधन हुई, बकेर घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं हुई। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर 1 वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत होवंजा, जेकर अनुबंध पिछला महीना ही रिन्यू करल गल बाटे। मंत्री अशोक सुबो के अनुसार सब डॉक्टर विधिवत पंजीकृत बाटे और उनकर मुख्य कार्य बुजुर्ग लोग के घर पर ही जाके जाँच करे के और दिव्यांग व्यक्ति के मूल्यांकन खातिर मेडिकल बोर्ड में बैठक की है। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पाद के G2G समझौता पर ही बातचीत जारी बाटे। एसटीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष

0: रेनबल कन्ट्राक्ट परिचर्चा होता जिम्मे मूल्य निर्धारण मुद्रा और गुणवत्ता शर्त शामिल बाटे मंत्री माइकल सिक्वेन बतैलन की वैश्विक परिस्थिति और फ्रेट लागत बढ़े से देरी होल बाटे बकीर समझौता जुलाई के अंत ले पूरा हो के उम्मीद बाटे। फुटबॉल के बात करी ले जाता किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में सबसे जस्ती गोल करे के रिकॉर्ड अपन नाम कर ले बाटे। फ्रांस स्वीडन की 3-0 से हरा के अंतिम 16 में जगह बनाई ली बाटे जहां उकर मुकाबला पराग्वे से हुई। कल खेले गए मैच में एरिंग हालान ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल करके नॉर्वे के आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दिलैलन जिससे अब वर्ल्ड कप के अंतिम 16 दौर में ब्राजील के खिलाफ एक बेहद दिलचस्प मुकाबला तय हो गल बाटी। और अब मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मैच चलता जहां पर ही मेक्सिको की जीत 2-0 से हुआ था। मेक्सिको सिटी में खराब मौसम के कारण मैच 1 घंटा से देरी से शुरू हुआ। ये मैच के विजेता लेंदी के अंतिम 16 के दौर में इंग्लैंड या डीओकोंगो के सामना करी। और लाहौर के पास एगो इमारत की छत ढही होला से 14 लड़का के मौत हो गल बा। ये घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर में एगो निजी ट्यूशन सेंटर में होल। अधिकारी लोग घटना की जांच शुरू कर दिले बाटे और प्रारंभिक जांच के तहत 2 जना के हिरासत में लेवल गल बा। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल अपन ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्ते।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website mbc.mu and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
3: Morning Beat.
4: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A very good morning, सुबह के 8:07 हुए हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: When is the 1st of July? Good morning and welcome. चलिए भैया आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट। उम्मीद करती हूँ गाने एकदम कमाल के यार आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारे सेकंड आवर में अभी क्या होने वाला है, अरविंद फिर से आने वाले हैं और यहाँ पर हमारी कुछ बहुत सारी बातें भी होती हैं, आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 549 and 1294 एंड अगर आप रोड पे ट्रैफिक से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो भाई तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अभी फिलहाल के लिए आपको पता ही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए आए मिलते हैं विधिमा के साथ।
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह देश के दक्षिणी ढलानों और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, तटवर्ती इलाकों पर 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर और आज शाम 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
6: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes chouchou pour 8,95 €. 500 grammes giromon pour 9,95 €. 500 grammes mandarine pour 49,95 €. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet frais pour 104,95 €.
5: Pas de prix là. Bazaar, Maudirou. Rendez-vous Gekot Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
7: On est tous Winners.

0: सुबह के 8:14 हुए हैं, मेरे दोस्तों के मैसेज आने लगे हैं 549 1294। थैंक यू सो मच राखी, गुड मॉर्निंग टू यू। और भी बहुत सारे दोस्त हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि ऐसे ऐसे गाने चलते हैं तो हम स्टूडियो में डांस करते हैं? हाँ, नॉट टू यू, आप भी कर रहे थे डांस, झूठ मत बोलो।
1: Avant tout défi, tout long shift commence par une bonne décision. Nescafé.
0: दोस्तों, हर जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्द के साथ लड़ रहा होता है। हर कोई किसी न किसी दर्द के साथ लड़ते हुए अपनी सोच को भी बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी वो बदल नहीं पाता। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ मेहमान होते हैं, उन्हें अपने परमानेंट एड्रेस मत बनाओ, क्योंकि पॉजिटिव सोच हर दिन एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलती है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नॉर्मल सी बात है। फर्क इस बात से पड़ता है एक्चुअली कि हम उन थॉट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। अगर आप उन्हें चैलेंज करके पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच को चूज करते हो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, पीस और ग्रोथ बढ़ने लगती है। देखो, पहले नोटिस करो कि आप क्या सोच रहे हो। क्या ये थॉट्स फैक्ट हैं या सिर्फ डर? मैं नहीं कर सकता के बजाय अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि मैं प्रैक्टिस से बेटर हो सकता हूँ, सोचो ऐसे सोचो तो सोच बदलने लगती है। 3 चीज़ें ऐसी जिनके लिए आप अगर थैंकफुल हो तो उन्हें लिखो पेपर पे। इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। और जो लोग मोटिवेट करते हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, क्योंकि वो हमेशा आपको लिफ्ट करेंगे, हमेशा आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिससे अगर आपने कुछ बुरा भी सोचा तो आपको वहीं पे करेक्ट कर देंगे। और रोज़ आपको अपने मन में ये कहना है कि मैं हर नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूँ। अगर ये आपने कर लिया ना, फिर आपके मन में जितने भी निगेटिविटी हैं सब चेंज हो जाएंगे, फिर आपका ग्रोथ भी होगा।
1: Commence par une bonne décision. Nescafé.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: बोलने के लिए तो मैं रेडी हूँ, मुझसे बोलो ना, बोलो बोलो, आप बार उनसे पूछ रहे हो, उनके पास टाइम नहीं है, मेरे पास पूरा टाइम है, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, आप बस पूछ तो लो। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ आपके

डेडिकेशंस के साथ और आपके मैसेजेस के साथ. नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे हाइलैंड्स के दीपक के लिए. एंड साथ में यहाँ पर विशिंग याशना जातू अवलमाथी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा प्यार है आपके लिए. और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. और कहते हैं कल मेरी सासू माँ का बर्थडे है, उनका नाम है मीला मानती रामनुरथ, 60 ईयर्स के हो रहे क्यूबिप से हैं, तो उनको बहुत सारा प्यार आज से भेज रहे हैं. ये है फ्रॉम बजय आश्विन कुशमीला ऋषिका रिधान आशना सचिन रामरुत एंड तोयडुकु फैमिली की तरफ से, थैंक यू सो मच. और वहीं पे ओम कृष्णावन ओमुगम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए विशेज हैं. ये है रति फ्रॉम दीप रिवर बिलेया एंड यहाँ पर विशेज हैं आपके फैमिली की तरफ से. मम्मी है अलका एंड साथ में है भाई अरविंद एंड गोविंद फैमिली फ्रॉम दीप रिवर. तो चलिए इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करते हैं आप सभी उन तमाम दोस्तों के लिए जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. याद रखिए कि थोड़ी देर में हमारी आपकी मुलाकात तो हो ही रही है लेकिन अरविंद से भी मुलाकात होगी क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन लेकर आ रहे हैं थोड़ी देर में.

0: चलिए इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं और अरविंद को ढूंढ लाते हैं।
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होगी 48 teams, 104 matches. Radio Mercy की टीम के साथ चलिए United States, Canada और Mexico.
3: Radio Mercy के साथ
2: World Cup magazine.
4: वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन कहते हैं अपने घर में चूहा भी बब्बर शेर बन जाता है। हम ये नहीं कहते कि मेक्सिको की टीम चूहा है, चूहिया है, पर जिस तरह से अपने मैदान में ये टीम खेल रही है शेर से कम नहीं है। अपने फैंस के सामने, वो भी अभी से कुछ समय पहले अज़्टेका स्टेडियम में फट गया ये स्टेडियम, रोका स्टेडियम, मेक्सिको और इक्वाडोर वाला मैच। मैच शुरू होने से पहले बिजली चमकी और मैच में भी मेक्सिको की ओर से कम धमाका नहीं हुआ। 2-0 से इक्वाडोर पर जीत, क्यूमोनेज और यिमेनेज का एक एक गोल। फर्स्ट टाइम सिंस 1996 मेक्सिको की टीम नॉकआउट राउंड में एक मैच जीत पाई। अब अगर इंग्लैंड की जीत होगी तो सामना होगा मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच, इंतजार करेंगे। इधर एक और मास्टर क्लास परफॉर्मेंस फ्रांस और उसके कैरिस्मेटिक स्ट्राइकर किलियान एम्बापे की ओर से। अर्लिंग हालैंड भी हर मैच में स्कोर करता आ रहा है और नॉर्वे बेस्ट ऑफ 16 में पहुंचा। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड खतरे में है, किलियान एम्बापे का डबल रहा, मतलब एम्बापे ऑल टाइम लिस्ट में मेसी से केवल एक गोल पीछे है और इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट के लिए दोनों बराबर 6 गोल पर है। फ्रांस का तीसरा गोल बाकोला ने स्कोर किया। फ्रांस के स्ट्राइकरों के सामने स्वीडन की टीम डर गई, ऊपर से हाई स्पिरिट, यूनिटी, सब कुछ देखने को मिले इस फ्रांस की टीम में। माइकल ओलिजे के दो पास पर दो गोल। अगला मैच पाराग्वे के खिलाफ होगा। फ्रांस के ले ब्लू जिस तरह खेल रहे हैं, बाकी टीमों को डरना होगा। नॉर्वे ने इतिहास रचा, पहली बार के लिए नॉकआउट में जीत। वाइकिंग रो सेलिब्रेशन जारी है, मार्टिन ओडेगार्ड ड्रम पर था। नॉर्वे ने 2-1 से आइवरी कोस्ट को हराकर अपना मार्ग प्रशस्त किया। विनिंग गोल और कौन, अर्लिंग हालैंड का रहा। अगला मैच एक ब्लॉकबस्टर होगा, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे। आज 6 बजे इंग्लैंड की बारी, सामने होगी अफ्रीका की बहादुर टीम कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और रात्रि के 12 बजे मिडनाइट किक ऑफ बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। कल सुबह 4 बजे यूएसए वर्सेस बोस्निया और कल रात स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया। वैसे मैच का पहला गोल स्कोर करने के बाद किलियान एम्बापे ने डगआउट में जाकर अपने मैनेजर जीजे देशों को सीने से लगाया।

0: गले से लगाया। दिल को खुश करने वाला ये पल, क्योंकि कुछ दिन पहले देशों की मां चल बसी थी और देशों टीम का तीसरा मैच नहीं देख पाया था। एम्बापे के बाद पूरी टीम ने देशों को गले से लगाया और कहा, सुख दुख नू सोम यूनी, हम साथ साथ हैं। फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के टीम प्रेजेंटेशन के दौरान हमने आप लोगों को आगाह किया था कि नॉर्वे बहुत आगे जाएगा। क्वालिफिकेशन में दो दो बार इटली को हराना कोई मामूली रेफरेंस नहीं। अर्लिंग आलोन है तो सब पॉसिबल है, माएस्ट्रो ओडेगार्ड भी है, नॉर्वे को हराना आसान नहीं होगा। नॉर्वे द वाइकिंग्स अपने ट्रेडिशनल वाइकिंग रो सेलिब्रेशन के साथ वर्ल्ड कप में धूमधाम से आगे जा रहे हैं। वाइकिंग रो का या फिर रो चांत इसे भी कहते हैं, ये एक वायरल स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन है, नॉर्वे की टीम और सपोर्टर का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन। इसमें हजारों फैंस और खिलाड़ी सिटिंग शोल्डर टू शोल्डर एक अंशित वाइकिंग लॉन्गशिप के रोइंग मोशंस को सिंक्रोनाइज्ड करते हुए मिमिक्री करते हैं और रो रो चिल्लाते हैं और ड्रम बजाते हैं। शुरू में एक क्राउड लीडर ट्रेडिशनल वाइकिंग हॉर्न बजाता है। स्पोर्ट्स में इसका मतलब है कम्युनिटी, ड्रॉपिंग द ईगो और रोइंग द टीम, मतलब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ईगो को छोड़ एक साथ हाथों में हाथ टीम को आगे ले जाना, यह है सिंबल वाइकिंग रो सेलिब्रेशन का। नेदरलैंड्स के एलिमिनेशन के बाद हेड कोच रोनाल्ड कोयमन रिजाइन कर गया। वहां से ये भी खबर है कि जस्टिन क्लाइवर्ट, क्विंटन टिम्बर और क्रिसेंसियो समरविल जो पेनाल्टी मिस कर गए, तीनों पर ऑनलाइन सोशल मीडिया में डिस्क्रिमिनेटोरी रेसिस्ट अब्यूज और हेटफुल कमेंट्स हुए हैं। ब्राजील के लिए इंजुरी क्राइसिस, लुकास पाकेटा नॉर्वे के खिलाफ नहीं खेल पाएगा, मस्कुलर इंजुरी प्रॉब्लम है। पाकेटा से पहले राफीना भी इंजुरी लिस्ट में जुड़ गया है। इस वर्ल्ड कप में न्यू रूल कोविड माउथ प्रोटेस्ट के लिए दूसरा रेड कार्ड ये इक्वाडोर के खिलाड़ी हिनकाके को दिया गया। इंग्लैंड आज खेलेगा, उसके लिए राइट बैक यारल क्वांशा और रिकी जेम्स दोनों आज नहीं खेल पाएंगे, इंजुरी के कारण दोनों ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे। कोच टोमस टुहल राइट बैक में जेड स्पेंस या एजरी कोनसा को ला सकता है। टोमस टुहल ने पेनाल्टी शूट आउट के लिए भी खूब तैयारी की है। टुहल ने कहा, पेनाल्टी प्लान फॉर्मर मैनेजर गार्थ साउथगेट स्टाइल का ही होगा। 2016 में जब साउथगेट आया था, इंग्लैंड का पेनाल्टी शूटआउट रिकॉर्ड खराब था, ओनली वन आउट ऑफ सेवन। साउथगेट के साथ तीन विंस आउट ऑफ फोर। साउथगेट का मानना था पेनाल्टी लॉटरी नहीं, तैयारी और क्लैरिटी जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ट्रेनिंग में ही पेनाल्टी लेने वालों की लिस्ट बन जाती थी। गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड भी ओपोनेंट्स के पोटेंशियल पेनाल्टी टेकर्स पर रिसर्च करके आता था, वाटर बॉटल में नोट्स के साथ आता था। इस बार क्या होगा, आज सामना है कोंगो से, अगर जीत हुई तो आगे आग मेक्सिको इंतजार कर रहा है। सो दिस वाज द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस एमबीसी टीवी और एमबीसी रेडियो के साथ।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: FIFA World Cup 2026, 11 June to 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: B for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ये का गाना हो गया कि तू बोले जब तलक मैं नाचू तब तलक, वो इतना डांस तो मुझसे नहीं होगा भाई, थोड़ा मेरे पैरों का ख्याल तो रखो। उम्र के साथ साथ कमर जो है वो कमरा बन जाता है, डांस करना जरा मुश्किल हो जाता है, तो सोच समझ के चलो भाई। आज के भी नौजवान हमारे अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है और ज़्यादातर उनका खाना बाहर होता है, बड़े फैंसी खाना खाना पसंद करते हैं, जबकि आजकल यही दिखाया गया है कि आपकी बॉडी को घी की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को गुड़ की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है। ये वही सारी चीज़ें हैं, ये जो ग्रीन टी वगैरह कहते हैं, ये हमारे दादी नानी के घरेलू नुस्खे हैं, ये जिन्हें आप गोल्डन मिल्क कहते हैं, हम उनको हल्दी वाला दूध बोलते हैं, तो बच्चों को ये सब सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अगर ठीक से ना सुने ना नानी तो कान पकड़ के बिठाना, फिर उसके बाद उनको बताना कि ये जो आप लोग अभी इंटरनेट पर ये जो ट्रेंडिंग रील्स चल रहे हैं ये आप ज़माने से करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे क्या पता। चलो कोई नहीं, तो अभी आप लोग जहाँ तक पहुँचे हैं मैं आपका वेलकम करती हूँ। आप सुन रहे हैं इस समय बिरिता के साथ मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती। आपका मूड कैसा है जानना चाहती हूँ, आप कैसे हैं जानना चाहती हूँ। भाई हमसे तो माँ पूछो तो अच्छा ही है, ये सर्दी खांसी ज़ुकाम हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती हैं। अब शादी में गए हो तो जाहिर सी बात है आप कंबल ओढ़ के तो नहीं जाओगे ना, थोड़ा सज धस के जाओगे, तो ठंड की वजह से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लोग हल्का हल्का ज़ुकाम सर्दी खांसी तो हो ही जाती है। स्पेशली जब सर्दी गर्मी होती है तो यहाँ पे हमारे यहाँ दिन में समर होता है और फिर उसके बाद रात में विंटर शुरू हो जाता है, फिर विंटर सुबह तक होता है, फिर दिन में फिर समर शुरू हो जाता है। इसके चलते आवाज़ भी आप देख रहे हो, आप सुन पा रहे हो, थोड़ा सा अलग चल रहा है। ऐसे आवाज़ में गाने गाने का बड़ा मन होता है। मैं गाना गाऊँ? नहीं? ओ रियली?

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: And yes, you're listening to Radio Musti. हमारे साथ आप chill कर रहे हो. वैसे मुझे किसने बोला था गाना नहीं गाने को, मैं तो गाऊंगी. पता है मैं शारदा की जो आवाज़ है ना, जब भी मैं बीमार होती हूँ तो उनकी आवाज़ में गाना गाती हूँ. और मैंने भी हाल में गाना गाया था और लोगों ने इस गाने को इतना पसंद किया, इसने पसंद किया कि उन्होंने खुद कहा कि ये जो लिरिक्स है ना, हम उसको रिस्पेक्ट दे के हम उसको अप्लाई कर रहे हैं. मैंने गाना गाया था, मैं सुनाती हूँ. गाना था, जाने भी ते सनम मुझे अभी जाने जाने जाने जाने जाने जाने दे. फिर उसके बाद लोगों ने कहा विजेता प्लीज़ जाने दे, एंड वो खुद चले गए. मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मैं कुछ और गाना गाऊंगी जहाँ पे लोग बैठे रहे, क्योंकि इस गाने के बाद सब चले गए थे. एनीवे आप तो यही हो.
3: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो. दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती.

0: प्रेम रतन धन पायो। और चलिए मैंने भी यहाँ पर आपके बहुत सारे मैसेजेस पायो, उसके लिए थैंक यू सो मच। गाना तो बहुत बढ़िया है, बीच में लड़कियां पता नहीं क्यों आयो आयो कर रही थी, चल जाने दे। अभी हम आपसे मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में 7 बजे। आपको पता है ना अभी हमारे बाद प्रोग्राम जारी रखा जाएगा, यानी कि ये होगा आपका मॉर्निंग मस्ती।
1: मॉर्निंग बीट RM2 Radio Musti in the mix.

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है विधिमा। नमस्ते आपको।
1: नमस्कार रत्ना, सभी को नमस्कार। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होगा, जिसका पालन न करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पत्रकार से आवेदन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग ₹3.47 बिलियन बकाया है, जिसमें ₹2.92 बिलियन पुराने बकाया शामिल है। 30 जून 2025 को समाप्त वर्ष में CWA ने ₹755 मिलियन का घाटा दर्ज किया। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुबो के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। इनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं, जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार मामलों का आकलन करते हैं। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

फुटबॉल की बात करें तो किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर एक तरफा जीत दर्ज की। कल खेले गए मैच में अर्लिंग हालैंड ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल करके नॉर्वे को आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। और मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मैच चला जहां मेक्सिको की जीत 2-0 से हुई। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, 12 मिनट एंड 1st of July। हे, इट्स ऑलरेडी 1st of July, यानी कि महीना जहाँ पर नई शुरुआत हुई है वहीं पर नई एनर्जी, नए फोकस और नई प्रतिभा के साथ बिल्कुल सेट टू स्पेंड द डे। ऐसा पहली जुलाई की बात करें तो काफ़ी जगह, काफ़ी देशों में बहुत कुछ मनाया जा रहा है। अगर 1st जुलाई की बात करें तो भारत में कह सकते हैं कि उन हीरोज़ को जो व्हाइट कोट पहनकर हर रोज़ ज़िंदगी बचाते हैं, उनको सल्यूट। हैप्पी डॉक्टर्स डे। और वहीं पर जैसे कहा था, इंटरनेशनल जोक डे, यानी कि किसी की ज़िंदगी में थोड़े स्माइल ला सकते हैं। सो उन सभी के लिए जो ज़िंदगी में खुश रहते हैं, क्यों ना खुशियाँ फैलाएँ, किसी और को भी मुस्कुराने की वजह दें। और वैसे भी कहते हैं कि हंसी भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। और म्यूजिक लवर्स के लिए आज इंटरनेशनल रेगे डे भी है। सो लेट्स सेलिब्रेट लाइफ, जिंदगी में ऐड करते हैं स्पाइस।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए साहब जानते हैं सितारों की चाल और शुरुआत करते हैं हुए
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन आपके लिए संतोष, सफलता और खुशियों की मधुर सौगात लेकर आएगा। व्यापार से जुड़े आपके जो प्रयास है वो रंग लाते दिखाई देंगे और किसी योजना से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप संतान के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं तो आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, सुकून मिलेगा। हालांकि अतीत की किसी गलती को दोहराने से बचना होगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: वह भाग्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे मन हल्का और मन काफ़ी प्रसन्न भी होगा। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए दिन काफ़ी उत्साहजनक होगा। परिवार में किसी शुभ कार्य या विवाह की चर्चा पूरे घर को उत्साहित कर सकती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज का दिन धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है, लेकिन अंत में राहत भी देगा। लंबे समय से रुका हुआ सरकारी कार्य पूरा होने की दिशा में बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है और थोड़ी भागा दौड़ी बढ़ सकती है। आर्थिक मामले में सोच समझकर ही आप निर्णय लें, क्योंकि उधार या लेन देन से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज का दिन शांत और संतुलित ऊर्जा लेकर आएगा। यदि वैवाहिक जीवन में पिछले दिनों से कुछ खटास या फिर गलत फहमियां चल रही थी तो अब रिश्तों में फिर से मिठास लौट सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ हुई चर्चा आपको नई दिशा दे सकती है। संतान की बात करें तो उनकी उपलब्धियां आपके मन में गर्व और साथ में प्राइड भर के ही रहेंगी। अरे साहब, काम करते रहिए मिल बैठ कर।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे तो आज व्यक्तित्व का तेज चारों ओर आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। जिस कार्य को आप आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस संतान की प्रगति आपके लिए गर्व का विषय बनेगी। साथ में बैठकर कुछ प्लानिंग कीजिए। फ्यूचर
2: वर्गो कन्या राशि।

0: भाई आपके सामने नए अवसरों के कई द्वार खुल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। कार्य में जो जुड़ी यात्रा से रिलेटेड काम है वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपके मन में कुछ नया अलग करने की इच्छा जागेगी जो भविष्य में सफलता की मजबूत नींव बन सकती है।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: भाई जो दिन है वो प्रगति, आकर्षण और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आएगा। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आ सकता है जो आपके लिए कुछ ऐसा कर जाएगा कि आपके दरवाजे खुलते जाएंगे। भविष्य के यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उसे निभाने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज आपके हर कदम को आपको सोच समझ कर उठाने की आवश्यकता है। भाई बहुत जरूरी है कि आप जो भी फैसला लें अपना वक्त लेकर, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में सुधार की मांग कर सकता है, इसलिए अभी सोच लें। बिजी रहने वाले लेकिन अच्छी बात यह कि आपकी जरूरतें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के लिए कोई उपहार, कोई विशेष खरीदारी, कोई सरप्राइज।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज जब पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आ रही है, वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें क्योंकि छोटी सी लापरवाही परेशानी खड़ी कर सकती है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए काफी भाग्यवर्धक साबित होगा। कोई रुकी हुई डील भी अचानक आगे बढ़ सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: व्यापार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। अच्छी बात है कि आप भी प्रयास करते जा रहे हैं। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील अब पूरी हो सकती है और उसका लाभ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। परिवार में किसी सदस्य से किया गया वादा निभाना जरूरी होगा क्योंकि आपकी बात का उनके जीवन में विशेष महत्व है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज का दिन नई जानकारियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। यात्रा या किसी से मुलाकात के दौरान एक महत्वपूर्ण सूचना भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। दिन थोड़ा सा बिजी रहेगा, भागा दौड़ी बनी रहेगी। कोई व्यक्ति आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करे, आप इस पर ध्यान न दें, अपना काम जारी रखें। नई नौकरी या करियर से जुड़े अवसरों की ओर भी आपका ध्यान जा सकता है।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस अपनी मेहनत और समर्पण इसको अपना हथियार बना लीजिए। कार्य क्षेत्र में किए गए जो प्रयास हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने की संभावना रखते हैं। माता जी के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी और उनके साथ बिताया गया समय आपको इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। हालांकि बिना वजह क्रोध करने से आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखें, गर्मी को रखें साइड में।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Yes, back with the music. Up, very good morning, आप सभी को. और आज का lifestyle mantra. Lifestyle mantra. हर दिन 10 मिनट की खामोशी और मिलेगी आपको पूरे दिन की clarity. अच्छा, 10 मिनट होगा क्या? होगा ही क्या? आप कुछ सोच पाएंगे, अपने बाकी के दिन की प्लानिंग कर पाएंगे. भाई, आज की दुनिया में हम लगातार नोटिफिकेशंस, कॉल्स और सोशल मीडिया के बीच घिरे रहते हैं. लेकिन रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट, ये जो क्वाइट टाइम है ना, ये चाहे बिना फ़ोन के बैठना हो या फिर डीप ब्रीदिंग करनी हो या सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना हो, स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है और फोकस को इम्प्रूव कर सकता है. भाई सोचिए, हम रोज़ फ़ोन को रिचार्ज करते हैं लेकिन अपने दिमाग को रिचार्ज करने के लिए कितना वक्त निकालते हैं? ये नहीं सोचा ना. भाई आज का चैलेंज यही है कि दिन में किसी भी वक्त सिर्फ 10 मिनट के लिए डिजिटल दुनिया से ब्रेक लीजिए. नो फोन, नो टीवी, नो लैपटॉप, बस आप और आपके ख्याल. बस अब ये सवाल आपके लिए, अगर आपको रोज़ 10 मिनट सिर्फ अपने लिए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे या फिर एक गरम गरम चाय की प्याली हो या फिर कोई उसको पिलाने वाली हो? अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि याद रखिए, खुद के साथ बिताया हुआ वक्त कभी वेस्ट नहीं होता. भाई वो होती है अपने पर इन्वेस्टमेंट.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए अगर बात करें हम कुछ मूवीज की तो काफी बात हो रही है, चर्चा में है। अब कौन सी मूवी 2026, वैसे आधा तो बीत चुका है लेकिन कुछ बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं। अब दूसरे पार्ट में यानी कि 6 महीने में आने वाली कुछ फिल्म हैं जिनकी बात हो रही है, और एक है रामायणम। भाई नमित मल्होत्रा की फिल्म है, बड़ी कहानी के दो हिस्सों में पहला पार्ट होने वाला है। इसमें रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में और यश रावण के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में और सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं पर अल्फा, ये भी काफी चर्चा में है। दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट की आने वाली स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा। अगर बात करें हम इसकी फीस की तो सुनने में आ रहा है कि आलिया भट्ट की फीस 300% ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉबी देओल। अनिल कपूर भी है इस मूवी के अंदर एंड कह सकते हैं स्पाई यूनिवर्स की एक और इंस्टॉलमेंट। वहीं पर टॉक्सिक, यश की फिल्म टॉक्सिक, जिसको हम कह सकते हैं काफी लेटनेस का सामना करना पड़ा, और इसके अंदर होंगी नयनतारा, कियारा आडवाणी, उमा कुरैशी, तारा सुतारिया और बड़े कलाकार शामिल हैं। वहीं पर शाहरुख खान की किंग, इसकी बात हो रही है धमाल 4, ये भी काफ़ी एक कॉमेडी ड्रामा होने वाली है। दृश्यम 3 अजय देवगन की, वैसे इसमें बहुत सारा एक्शन तो होता ही होता है लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जो ट्विस्ट होता है एंड में, की कुछ भी हो सकता है वो कुछ अलग। वहीं पर मिर्ज़ापुर द मूवी हैवान, ये भी काफ़ी कमाल होगी, इसमें अक्षय कुमार सैफ अली खान एक साथ नजर आने वाले हैं। और वहीं पर ईटा है, इसमें क्या होगा पता नहीं लेकिन हाल ही में इसका टीजर उसने काफ़ी ध्यान खींचा है और लोग कह रहे हैं कि अब ये मूवीज़ हैं बड़ी वाली जिन पर है सबकी नज़र, देखते हैं चलती है किस किधर। हम रखेंगे आपको अपडेटेड, इट्स ऑल हैपनिंग राइट है। चलिए अब चलते हैं एक और गाने की तरफ, कॉकटेल का बहुत ही पॉपुलर होता हुआ गाना।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 1st of July, Wednesday, then time check exactly 10 a.m.
6: वक्तों के संक्षिप्त समाचार का स्टूडियो में आगे विधि उनसे मिलते हैं. नमस्कार.
7: नमस्कार विकास. सभी सुनने वालों को नमस्कार. डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्या नवामारी के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है. इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी. समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी. पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी. आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा. साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होगा, जिसका पालन न करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऊर्जा मंत्री पथिका सेवादन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपये बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपये पुराने बकाया शामिल हैं. 30 जून 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया. मंत्री ने बताया कि पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि औसतन बिक्री 14 रुपए में होती है, जिससे 10 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर का नुकसान होता है. उन्होंने ये भी कहा कि व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी की दरों में संशोधन होगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं होंगे. समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए. मंत्री अशोक सुबों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है. मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है. STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है. मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. और विदेश में 2025 की अपनी अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी में व्यापारिक सौदों से $1 बिलियन से अधिक की कमाई की. 927 पन्नों के खुलासे में उन्होंने एक ट्रंप मेमे कोइन से $635 मिलियन की रॉयल्टी की जानकारी दी है. पदभार ग्रहण करने से कुछ दिन पहले इसे लॉन्च किए जाने के बाद से इस कोइन की कीमत में भारी गिरावट आई है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. क्लोजेल रोड फिनिक्स में 71 साल के 71 years old के श्री विनय मित्र चुरामन, जो विनय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 12:45 बजे, उनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे उनके घर क्लोजेल रोड फिनिक्स से उठाकर सुल्फेनो की

0: शानभूमि ली जाए जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 1:15। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Beautiful track to start with, ladies and gentlemen. That's what you're nominated for. And 1st of July. All right. आधा जो साल है वो खत्म हो गया लेकिन आधा भी बाकी है. वो कहते हैं ना कि अलग अलग एक एटीट्यूड होता है, पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नजरिया होता है कि ग्लास आधा भरा है कि ग्लास आधा खाली. मैं तो ये कहूँ कि पिएगा कौन.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
0: भैया लॉस से सामने जाए घर की बात करें तो काफी हलचल तो रहती रहती, लेकिन म्यूजिक टू सूद यू डाउन, टू गेट यू इन द राइट रिदम. चलिए गानों के साथ आप जुड़े हुए हैं और ये है मस्ट मॉर्निंग शो, जहां पर थोड़ी देर में कुछ हाउस होल्ड को टिप्स की बात करने वाले हैं, साथ ही में आपके मैसेजेस, बी टाउन की खबरें. कहा था ना म्यूजिक चेंज होगा थोड़ा सा. फील द बीट एंड इसी चलती अपनी हार्ट बीट म्यूजिक के साथ.

0: 2 Radio Musti.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
0: Musti Mornings, Radio Musti.
2: देखिए होता है कि अपना वार्डरोब है, अपनी चॉइस होती है. हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप फैशन के साथ चलते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फैशन पुलिस कैसे काम करती है. वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बताते हैं कि जो पहली नज़र पड़ती है वो कहाँ पर. एक्चुअली फैशन सिर्फ कपड़ों तक नहीं, स्टडीज इन साइकोलॉजी सजेस्ट करती हैं कि जो लोग होते हैं वो आपके फुटवेयर को ज़्यादा नोटिस करते हैं. यानी कि आप किसी से मिलते हैं तो आपके फुटवेयर को देखते हैं. सो क्लीन शूज़ इंस्टेंटली एलिवेट योर एंटायर लुक. जैसे आप जाते हैं तो आपकी स्टाइल, आपका स्टाइल के साथ साथ फैशन सेंस सब कुछ लगता है. तो बस घर से निकलने से पहले एक मिनट शूज़ को ज़रूर पॉलिश कर लो या वाइप कर लो, दे दो उसको एक क्लीन लुक और फैशन की सेंस को कर लो लुक.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

0: ये
1: वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: सिर्फ शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: Chez Loulou, Mojo, Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus Lavie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri, 32 portions à 122,50 €.
2: Loulou Hypermarché.

0: दिन के 10:51 हुए हैं, आप इस समय सुन रहे हैं मॉर्निंग मस्ती मॉर्निंग, और विदिता नितुषा हम सब साथ साथ में हैं, तो यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज एंजॉय द लवली म्यूजिक जो आपके लिए लेकर आए हम खास।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
2: टक टक बॉलीवुड।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: दिन के 11 बजे हैं. एक बार फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा नमस्कार आपको
4: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को नमस्कार घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राष्ट्रसभा में बहस किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है घरेलू हिंसा के मामलों में अब पीड़िता को अपने घर और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि ये जिम्मेदारी आरोपी की होगी अदालत आरोपी को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकती है या उस पर पीड़िता के लिए वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने की बाध्यता लगा सकती है सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए का बकाया है जिसमें से 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया के रूप में हैं ये आंकड़े कल मंगलवार 30 जून ऊर्जा मंत्री पथका सेवादेन द्वारा सांसद अविनाश राम कलावन के एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में साझा किए गए पत्रिका सेवादेन ने आगे बताया कि एक क्यूबिक मीटर पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए है जबकि CWA को बेचे गए प्रति क्यूबिक मीटर पानी से औसतन केवल 14 रुपए ही प्राप्त होते हैं जिससे प्रति क्यूबिक मीटर 10 रुपए का घाटा होता है मंत्री ने पुष्टि की कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों के लिए पानी की दरों में संशोधन आने वाले महीनों में किया जाएगा हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस कदम से बाहर रखा गया है समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर कार्यरत हैं जिन्हें एक साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया है इन डॉक्टरों के अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए थे ये जानकारी कल राज्यसभा में सांसद आश्रय रामदास के एक प्रश्न के उत्तर में संबंधित मंत्री अशोक सुभो ने दी राज्यसभा में ही मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर हो रही G2G समझौते पर भी चर्चा हुई स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन साल की शुरुआत से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है मंत्री माइकल सिक्वेन ने कल सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की कि जुलाई के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और विदेश में वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के 6 दिन बाद जॉर्डन की एक बचाव टीम ने 3 साल के एक बच्चे को मलबे से जीवित बाहर निकाला है देश के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बच्चे के बचाव को आशा की किरण बताया है ये राहत कार्य ऐसे समय में सामने आया है जब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि हजारों लोगों को भोजन और आश्रय की तत्काल आवश्यकता है पिछले हफ्ते आए भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,943 हो गई है जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और हजारों लोग अभी भी लापता हैं तो इन्हीं खबरों के साथ ही 11 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए थोड़ी देर में शोक समाचार D12 NHDC विलनोमीबर्ग में 88 साल की 88 years old की श्रीमती पुष्पा नारायणन पैदाइशी नाम रामसामी और जो देवी नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थियां आज दिन के 2:30 बजे उनकी बेटी रजनी नारायणन के घर D12 NHDC विलनोमीबर्ग से उठाकर तुम्बोमीबर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Exactly, दिन के 11:10 हो रहे हैं. Yes, of course, it's the time to disco. लेकिन आप कहाँ खिसको? कहीं मजा आएगा? हमारे साथ जुड़े रहिए. It's your most morning on Radio Musty, और यहाँ पर मस्ती चलती रहती है. कभी विकास, कभी वेदिता, कभी नीतू. Yes, हम तो आजू बाजू में ही रहते हैं. लेकिन आप, whatever you might be, sending your messages on 5499-1294. कार पर होंगे. बोंको गाश्ती यू बोल.

0: सा गाना आपके लिए रूहदारी आपके प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है मस्ती मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आपका.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं. हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है. डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस. हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन. फोन नंबर 5799-3782. हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी.
3: Allons chez Lolo. Chez Lolo, c'est bon. Liquide vaisselle, 5 litres, 194,50 €. Chanteclair, Easy Pack, pilon 1 kg, plus foie de poulet 250 g à 305 roupies. Merimo, shampoing 400 ml, 95 roupies.

You're listening to Radio Masti और आप सुन रहे हैं अभी मस्ती मॉर्निंग जहां से भी साथ दे रहे हैं याद रखिए कि अभी मौसम जो है बहुत बदल रहा है सर्दी बहुत ज्यादा है लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है रात को अगर होस्ते के तो हल्दी वाला दूध जरूर पिए ग्रीन टी जरूर लें ड्राई फ्रूट्स खाएं विटामिन सी से अपने आप को एकदम अपने सर्दी जुकाम को कंट्रोल में करें और अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखिए याद रखिए जब सर्दी होती है तो पानी पीने का मन नहीं करता लेकिन यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड

0: services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories, including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website, nbc.mu, and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Radio Musti.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
7: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे भी धीमा नमस्कार।
9: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। देश के उत्तर में 5 मिलियन रुपए की चोरी के मामले में 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के एक व्यापक अभियान के तहत कल यमन से चुराई गई तिजोरियों में से 4 को बरामद कर लिया गया है। साथ ही चोरी की गई कुछ नकदी भी बरामद हुई है। इस मामले में अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त सूचनाओं और निजी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज के व्यवस्थित विश्लेषण के बाद उत्तर की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने साउथ डिवीजन की यूनिट और अन्य कई विभागों के सहयोग से उस वैन की गतिविधियों का पता लगा लिया है जिसका इस्तेमाल चोरी को अंजाम देने के लिए किया गया था। पुलिस ने वारदात से पहले, वारदात के दौरान और उसके बाद अपनाए गए पूरे रूट का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण कर लिया है। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राज्यसभा में बहस किया गया। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। घरेलू हिंसा के मामलों में अब पीड़िता को अपने घर और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि ये जिम्मेदारी आरोपी की होगी। अदालत आरोपी को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकती है या उस पर पीड़िता के लिए वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने की बाध्यता लगा सकती है। राज्यसभा में ही कल मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर हो रही G2G समझौते पर भी चर्चा हुई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन साल की शुरुआत से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्री माइकल सिक्वेन ने कल सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की कि जुलाई के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। और विदेश में ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर करीबाफ का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेहरान का शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अंतिम समझौते पर बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू नहीं कर दिया जाता। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेयर कुशनर के साथ मुलाकात की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। हसन हफाई स्ट्रीट फिनिक्स में 89 साल के 89 years old के जनाब मुसा सहुतुरा, जो मुसा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके घर हसन हफाई स्ट्रीट फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए मस्जिद बैतुल हक फिनिक्स ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। D12 NHT सिविल नोमीबर्ग में 88 साल की 88 years old की श्रीमती पुष्पा नारायणन, पैदाइशी नाम रामसामी और जो देवी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी बेटी रजनी नारायणन के घर D12 NHT सिविल नोमीबर्ग से उठाकर तोंबो मीबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। क्लोजर रोड फिनिक्स में 71 साल के 71 years old के श्री विनय मित्रे चुरामन, जो विनय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:15 बजे उनके घर क्लोजर रोड फिनिक्स से उठाकर सुल्फेगिनो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:15। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: रेट्रो रिदम।
1: ख्वाब तो हम रोज देखते हैं, लेकिन ख्वाब को सच होते देख टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं पेशेंस होती है सबसे बड़ी चीज। और अगर आज मंजिल दूर लग रही है, नो वरीज जी, एक ना एक दिन वहां तक पहुंच ही जाएंगे। जैसे टाइमलेस गाने हम तक पहुंच रहे हैं, 12:10 हुए हैं और आप कनेक्टेड हो चुके हैं नलमनी के साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर रेट्रो का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए पेश है और एक गाना स्पेशली आपके नाम, जो भी कनेक्टेड है RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: Retro Rhythm.
1: रेट्रो रिदम की खासियत पता है क्या है? ये वो फीलिंग है जो अंदर से सारे इमोशंस को बाहर लेकर आता है। एंड अगर आप कनेक्टेड हो चुके हो आरएमजी रेडियो मस्ती के साथ, देन फॉर श्योर आप वाइब को फील कर पाएंगे। बिग हेलो टू अनसुया जी, जो कनेक्टेड है अभी फैमिली के साथ, ड्राइव पर जा रहे हैं। एंड वो क्या है कि आज उनके पति हैरी जी का बर्थडे है, तो बेस्ट विशेज पूरी आरएमजी टीम की तरफ से। ड्राइव सेफ और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी के नाम जो कनेक्टेड है हमारे साथ।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Retro

0: रेट्रो रिदम।
1: हंसते हंसते एक जाएंगे रास्ते, दुनिया का क्या वो तो बदलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी अंदर की इनर चाइल्ड को नहीं बदलना है, उसे जब तक हो सके जिंदा रखना है। तो चलिए बैक टू मेमोरी लेन, उन्हीं गलियों में फिर से उन मेमोरीज को ताजा करने के लिए मिस्टर इंडिया मूवी से नेक्स्ट गाना फॉर यू।

0: Retro Rhythm.
1: Yes, आप जुड़े हुए हो रेट्रो रिदम के साथ है ना. आपको बता दें कि आज है इंटरनेशनल जोक डे. कहते हैं ना लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन और बॉलीवुड ने तो हमें हंसी के साथ साथ एवरग्रीन गाने भी दिए हैं. तो सोचा क्यों नहीं आज एक ऐसा गाना सुनते हैं जो सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाए. तो आपके लिए नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं सर जो तेरा चकराए, मूवी प्यासा से लिया गया मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में. तो चलिए हंसी का एक डोज रेट्रो रिदम के साथ एंजॉय कीजिए.
0: Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti. Musti.
3: Yeah. Mali. El Mali. Yeah.

0: Greatest mix of music. Feel the musty.
1: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे याचना नमस्कार.
2: नमस्कार नील मणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. देश के उत्तर में 5 मिलियन रुपए की चोरी के मामले में 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस के एक अभियान के तहत कल यमन से चुराई गई तिजोरियों में से 4 को बरामद कर लिया गया. साथ ही चोरी की गई कुछ नकद भी बरामद हुई है. इस मामले में अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्राप्त सूचनाओं और निजी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ सेफ सिटी फुटेज के विश्लेषण के बाद उत्तर की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने साउथ डिवीजन की यूनिट और अन्य कई विभागों के सहयोग से उस वैन की गतिविधियों का पता लगाया जिसका इस्तेमाल चोरी को अंजाम देने के लिए किया गया था. सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है और बीमारियां भी. ठंड हवाएं, घर के अंदर चलने वाले हीटर और वातावरण हमारी आंखों की नमी को सोख लेते हैं जिससे आंखों में जलन, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. इस बीच देश में कंजंक्टिवाइटिस के मामले भी काफ़ी बढ़ गए हैं. सभी से सावधानी बरतने की मांग की जा रही है. घरेलू हिंसा के बदले स्वरूपों को देखते हुए राष्ट्रसभा में बहस किया गया. डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है. ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतरीन ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है. प्रमुख कदमों में से यह है कि अब कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है, जो पहले नहीं किया जा सकता था. पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि वे शिकायत दर्ज करें और घटना कहीं पर भी हुई हो बिना किसी देरी के जाँच शुरू करें. विदेश की खबरों में वेनेजुएला में आए 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. ये संख्या इस बीच 1,700 पार कर गई है, 1,943 की तक पहुंच गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. मलबे तले लोगों को ढूंढ निकालने की कार्रवाई जारी रखी जा रही है, लेकिन दिन ब दिन और समय के साथ ही उन्हें जीवित निकालने की संभावना कम होती नजर आ रही है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आ गया दीजिए नमस्कार.
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
0: RM2, Radio Musty. I don't know.

0: रेट्रो रिदम। नमस्ते, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका फिर से आरएमजू रेडियो मस्ती पर। 1:09 हुए हैं और आपको बता दें कि शादियों का सीजन ना फुल ऑन मूड में चल रहा है। कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं बारात निकल रही है और कहीं डांस फ्लोर पर पुराने बॉलीवुड के गाने आज भी सबको नचा रहे हैं। वैसे एक बात तो सही है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन 70s, 80s और 90s के जो वेडिंग सॉन्ग्स का चार्म है वो कभी भी पुराना नहीं होता है। आज उन गानों के बिना शादी की प्लेलिस्ट अधूरी लगती है, तो चलिए इसी शादी वाली मूड को और भी रंगीन बनाते हैं एक एवरग्रीन वेडिंग फेवरेट के साथ। तो ये नेक्स्ट गाना उन सभी के लिए जो आज शादी कर रहे हैं या फिर शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिए आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti

0: रेडियो मस्ती
1: रेट्रो रिदम।
2: आपने जिंदगी में आके जिंदगी ही बदल दी अच्छे तरीके से। थैंक यू टू ऑल दोस जो भी कनेक्टेड हुए हैं आरएमचू रेडियो मस्ती के साथ। तो आपके जो प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं उनको पढ़ लेते हैं अभी। आप है शतु बेनागस से और आप नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं आशनी रेखा सुरेखा और माधव फैमिली के लिए जरूर जी। एंड वी हैव दादी कमला। नमस्ते जी, आप गाना डेडिकेट कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, ग्रैंड किड्स के लिए, रायान रैनाथन वीर आयशा अनिश्ता वनिश्ता वर्षा के लिए। एंड जना जी भी कनेक्टेड है फ्लैग से और वो सुन रही है आरएमचू रेडियो मस्ती को। एक रिक्वेस्ट है गाना याराना तेरे जैसा यार कहाँ। अपनी बेटी रीमा जेनिता शेषता अंशिनी सिल्विया यूवी कृषि शिव सरन फैमिली जो फ्लैग में रहते हैं। तो हो जाए आप सभी के लिए प्यारा सा गाना
1: रेट्रो रिदम
3: आरएमचू।

0: to Radio Musti.
1: रेट्रो का सफर है और आपके इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं द बेस्ट। तो एक ऐसा ही एक और गाना करते हैं हरी जी के नाम, जो भी ड्राइव कर रही है स्टे सेफ ड्राइव सेफ और आरएम जो वीडियो मस्ती के साथ वाइब करते रहिए।

0: Retro Rhythm.
1: और हाँ, ये गाना था स्पेशली उन सभी लिसनर्स के लिए जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन बर्थडे के साथ आती है एक नई कहानी, नए सपने और नए यादों का एक खूबसूरत सा चैप्टर। एंड बस मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और जिंदगी की प्लेलिस्ट में हमेशा पॉजिटिव वाइब का वॉल्यूम हाई रखें। और हम चूंकि पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अनमनी इजाजत लेती हूँ। आपको मिलने वाला है परी का साथ इन द नेक्स्ट आवर, तो यहीं पर आप वाइब करते रहिए। हैव अ ग्रेट आफ्टरनून विद योर आरएमचू रेडियो मस्ती।

0: आज सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश के उत्तर में 5 मिलियन रुपए की चोरी के मामले में 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के एक अभियान के तहत कल यमन से चुराई गई तिजोरियों में से 4 को बरामद कर लिया गया। साथ ही चोरी की कई कुछ नकद भी बरामद हुई हैं। इस मामले में अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त सूचना और निजी सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सेफ सिटी फुटेज के व्यवस्थित विश्लेषण के बाद उत्तर की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने साउथ डिवीजन की यूनिट और अन्य कई विभागों के सहयोग से उस वैन की गतिविधियों का पता लगाया जिसका इस्तेमाल चोरी को अंतिम अंजाम देने के लिए किया गया था। सर्दी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां, कई बीमारियां लेकर आता है। ठंड हवाएं, घर के अंदर चलने वाले हीटर और वातावरण हमारी आंखों की नमी को सोख लेते हैं, जिससे आंखों में जलन, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अपनी आंखों की सुरक्षा करनी इस समय ज़रूरी होती है। इस बीच देश के अस्पतालों में कंजंक्टिवाइटिस के भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। सभी से विशेष सावधानी बरतने की मांग की गई है। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राष्ट्रसभा में बहस किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पर पीड़ितों की सुरक्षा को काफ़ी मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। प्रमुख कदमों से एक है कि अब कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है। पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि वो शिकायत दर्ज करे और घटना कहीं पर भी हुई हो बिना किसी देरी जांच शुरू कर दे। विदेश की खबरों में वेनेजुएला की ये खबर, पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर आपात स्थिति की घोषणा की गई है। वहाँ लगातार आए 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद मारे गए इस लोगों की संख्या 1,900 पार कर गई है, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और हज़ारों लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच वहाँ पर बचाव कार्रवाई तेज कर दी गई है और मलबे तले बचे लोगों की को भी ढूंढ निकाला जा रहा है। समय के साथ साथ वहाँ पर जीवित बचने वालों की संख्या को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So well friends, a very good afternoon. दोपहर का टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक. It's time for your Bombay Talkies. और आज का हमारा ये जो शो है होने वाला है स्पेशल. So well, मैं हूँ परी आपके साथ और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार को जिसके अंदर एनर्जी भी डबल है, कॉन्फिडेंस भी डबल है और एंटरटेनमेंट भी फुल ऑन डबल है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली रणवीर सिंह जो सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना बर्थडे दिस मंथ. सो वी आर सेलिब्रेटिंग हिम आज उनके कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ एंड उनके कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स के साथ.

0: Mustis. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: एक ऐसा एक्टर है जिसने हर रोल में अपनी जान डाल दी, कभी बिट्टू शर्मा बनके दिल्ली का बिंदास लड़का, कभी बाजीराव बनके इतिहास रच दिया और कभी मुराद बनकर सपने देखने वाले को उम्मीद दी, कभी रॉकी रंधावा बनकर प्यार करने वाले को एक नया अंदाज दिया। एंड हाउ कैन वी नॉट मेंशन हमसा अली मजारी उर्फ जसकीरत रांगी, धुरंधर बनकर उन्होंने जीता हर किसी का दिल।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Allons chez Lolo. Chez Lolo, c'est bon. Liquide vaisselle, 5 litres, 194,50 €. Chanteclair, Easy Park, Pison, 1 kg, plus foie de poulet, 250 grammes, à 305 roupies. Merimo, shampoing 400 ml, 95 roupies.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं रणवीर सिंह, उनका असली नाम है रणवीर सिंह भावनानी। मुंबई में जन्मे रणवीर बचपन से ही एक्टिंग और परफॉर्मेंस के दीवाने थे। स्कूल हो या फैमिली फंक्शन, स्टेज मिलते ही परफॉर्मेंस उनका शुरू हो जाता था। कॉलेज के बाद वो अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी गए, जहाँ उन्होंने कम्युनिकेशन और थिएटर्स पढ़ा। वापस इंडिया आकर उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटर के रूप में अपना काम निभाया, लेकिन दिल से सिर्फ एक ही सपना था और वो था एक्टर बनना। कई सालों तक ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस मिले, लेकिन हौसला कभी नहीं छोड़ा। और फिर आया वो कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया, यशराज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की और बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर ने अपना डेब्यू किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सहारे नहीं किया. उन्होंने अपने टैलेंट से अपनी जगह बनाई. अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर अवार्ड फॉर

बेस्ट मेल डेब्यू। उसके बाद किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि एक के बाद एक आई उनकी सुपरहिट फिल्म्स। 2011 में आई लेडीज वर्सेस रिकी बहल। इस फिल्म में रणवीर ने एक चार्मिंग कॉनमैन का किरदार निभाया जो हर शहर में नई पहचान लेकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। फिल्म में उनकी वर्सिटैलिटी देखने को मिली और देखने को मिला उनका एक नया अंदाज।

0: Techies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों अभी तो हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर और आप हमारा साथ दीजिए. यह है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Check out your time. It's 3 p.m. तीन बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार। बात करते हैं हम स्थानीय स्तर के बारे में। पेंशन सुधार पर विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट की हम बात करें, जिसे कल प्रधानमंत्री ने संसद में पेश किया। ये रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य व्यापक परामर्श के आधार पर मौजूदा पेंशन प्रणाली में ऐसा सुधार करना है जो पर्याप्त, टिकाऊ और न्याय संगत हो। दो

0: 171 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में मींस टेस्ट का प्रस्ताव भी शामिल था। इसके तहत 60 वर्ष की आयु से आय के आधार पर चरणबद्ध पेंशन देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि बजट भाषण में इस प्रस्ताव को शामिल किए जाने के बाद इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज के हमारे सायंकालीन संस्करण में हम रिपोर्ट के पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें मॉरिशस की जनसंख्या की बदलती संरचना और बढ़ती आयु वाली आबादी से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। मृत्यु के बाद व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का क्या होता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर शीला ओमुगम ने शोध किया है। उन्होंने हाल ही में डिजिटल आफ्टर लाइफ अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में लेखिका ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डिजिटल खातों और व्यक्तिगत डेटा के बेहतर प्रबंधन तथा सुरक्षा के लिए एक डिजिटल चार्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अफ्रीका अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता कम करते हुए निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ मंगलवार को मॉरिशस में अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए सरकारी नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना तथा व्यापार और निवेश के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना ₹10,000 से बढ़कर ₹20,000 किया जाएगा। आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेक फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल है। लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेक्सिको शहर में फीफा विश्व कप के जश्न के दौरान दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 19 वर्ष एक युवती, 48 वर्ष एक महिला और 44 वर्ष एक पुरुष शामिल हैं। ये घटना मंगलवार को कल उस समय हुई जब विश्व कप में इक्वाडोर पर मेक्सिको की 2-0 की जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग राजधानी की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े। शहर प्रशासन के अनुसार 10 लाख से अधिक लोग मुख्य रूप से शहर के मध्य स्थित एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक के आसपास एकत्र हुए। ये 1986 के बाद विश्व कप के नॉकआउट चरण में मेक्सिको की ये पहली जीत थी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार, साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। Choc samachar sunye. Quand Charlot chemin grenier mais quand Charlot chemin grenier mais une assis sale qui 79 years old qui Sri Rajana Naraya श्री राजाना नारायण, जिन्हें धर्मनंद के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ममिता नारायण के घर कौशौलु शमेग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाले शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। रुद बॉशेरी मुकामे 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरजलाल सोनिया, जिन्हें विजय के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अमरावादी सोनिया के घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्तों की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमरो अत्यान ही एम लो नंबर 9 मोर्सेलमों माउंट पॉम्पलीमूसेज में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री ब्रेमानंदा मंगापति, जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी रविवार को सुबह 10 बजे उनके घर पॉम्पलीमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies, Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, आपका वार्म वेलकम करते हैं एंड लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल सेगमेंट, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह की। अप्स एंड डाउन्स कहीं आए, लेकिन उन्होंने प्रूव किया दैट वो है बॉलीवुड के वन एंड ओनली धुरंधर। सो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी से लेकर 4 बजे।
3: तो

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, और रणवीर सिंह की सबसे बड़ी खासियत है उनका कॉन्फिडेंस। चाहे अवार्ड फंक्शंस हो, क्रिकेट स्टेडियम हो, टीवी शोज हो या फिर फिल्म प्रमोशंस, रणवीर हर जगह अपनी पॉजिटिव एनर्जी से माहौल बना ही देते हैं। इस वजह से फैंस उन्हें प्यार से बाबा बुलाते हैं। 2013 रणवीर के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। संजय लीला बंसाली ने उन्हें कास्ट किया इन द फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये रणवीर के करियर का एक नया चैप्टर था। इस फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात हुई दीपिका पादुकोण से। लोगों को उनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद आई और रियल लाइफ से लेकर बन गया ये उनका रियल लाइफ लव। सो यहीं से शुरुआत हुई उनके और दीपिका की लव स्टोरी की। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री।

0: ताली बड़ो खड़ी दे दिए बजा।
1: RM2 Radio Masti.

0: is Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे फिल्म रामलीला की। जैसे कि हम बता रहे थे कि रामलीला के बाद रणवीर सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरफ रोमांस, दूसरी तरफ इंटेंस एक्टिंग और तीसरी तरफ डांस, हर डिपार्टमेंट में रणवीर ने टॉप फॉर्म में अपना जलवा दिखाया। और इसी फिल्म का एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आप सभी के लिए।

0: musty.
1: फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, और अगर आप रणवीर सिंह की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो एक बात आपको कॉमन मिलेगी, हर कैरेक्टर को उन्होंने दिल से निभाया। रोल के लिए वेट बढ़ाना हो, बॉडी बनानी हो, एक्शन सीखना हो या फिर पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी हो, रणवीर ने कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया। इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें आज बॉलीवुड के फाइनेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। और अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना लेकर आ रहे हैं आपके लिए। स्टे कनेक्टेड, ये है RM2 रेडियो मस्ती।

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की, लेकिन एक कैरेक्टर जिसने हर किसी का दिल जीता वो था हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत रांगी। धुरंधर फिल्म का ये उनका रोल लोगों को इतना पसंद आया कि लोग अब उन्हें बस ऐसे ही कुछ डिफरेंट किरदार में देखना चाहते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या जर्नी रहने वाली है, कितने हिट्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स कितने सरप्राइजेस। सो दैट वाज अ स्पेशल शो जहां पर हमने बात की रणवीर सिंह की, हुज सून गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सो वेल फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप भी हमारा साथ निभाते रहिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। Have a great time, have a great afternoon.

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Check out your time. It's 4 p.m. चार बजे की फ्लैश न्यूज में हम सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सभी को नमस्ते और प्रणाम. सबसे आगे स्थानीय खबरें. राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना 10,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए किए जाएंगे. आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेक फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल हैं. लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है. मृत्यु के बाद व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का क्या होता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर शिबा ओमुगम ने शोध किया है. उन्होंने हाल ही में डिजिटल आफ्टर लाइफ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है. इस पुस्तक में लेखिका ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डिजिटल खातों और व्यक्तिगत डेटा के बेहतर प्रबंधन तथा सुरक्षा के लिए एक डिजिटल चार्टर लागू करने का

0: प्रस्ताव रखा है। अफ्रीका अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता कम करते हुए निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ मंगलवार को मॉरिशस में अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए सरकारी नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना तथा व्यापार और निवेश के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। यूरोप पिछले कई सप्ताह से भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मियों की शुरुआत में आई इस लंबी और तीव्र लू ने पूरे महाद्वीप में लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। लगातार ऊंचे तापमान के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। सप्ताहांत के दौरान पेरिस में गरज चमक के साथ हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि इस भीषण गर्मी से हुई जनहानि का वास्तविक आंकड़ा अब सामने आने लगा है। फ्रांस की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 24 जून से अब तक अनुमानित संख्या की तुलना में लगभग 1000 अधिक मौतें दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। मृतकों में लगभग 85% लोग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्ग अत्यधिक गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों में शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

25 PM. Thank you for listening to Radio Masti. यहाँ पर रफ्तार वाइब्स ऑन द वेव्स. और सबसे पहले हम सभी का वेलकम तो करना चाहेंगे. नमस्कार टू एवरीवन, विशिंग यू अ ग्रेट आफ्टरनून. वैसे काम से घर या फिर घर से कहीं पर आप जा रहे हो, निकल चुके हो बाहर और अभी सफ़र जारी है. सो इसी सफ़र को और भी स्पेशल बनाने के लिए आपकी दोस्त हंसनी पहुंच गई है टू बी विद यू इन आज का रफ्तार वाइब्स. और इस म्यूजिकल जर्नी में बिल्कुल हम लेकर आएंगे कुछ धमाकेदार गाने ताकि जो आज के स्ट्रेस है वो बिल्कुल दूर हो जाए. इसलिए हम सेट करने वाले हैं ये म्यूजिकल शो आप लोगों के नाम. सो अगर अभी आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं सो टेंशन छोड़िए, होन जो है कम बजाइए, धैर्य ज़्यादा रखिए और मंजिल ज़रूर मिलेगी लेकिन सुरक्षित पहुँचना सबसे ज़रूरी है. राइट, टू रीच सेफली. तब तक के लिए जो म्यूजिक है उनको बस सुनते रहिए, उनका मजा आप लेते रहिए ऑन रेडियो मस्ती. और थोड़ी देर के बाद विल बी जॉइनिंग अरविंद जो हमें देने वाले हैं द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मैसेजेस. बिल्कुल, अगर है ये 1 जुलाई बहुत ही मेमोरेबल स्पेशल है आज आपके लिए, तो ये जो नया महीना है शुरू हो गया है, अनदर जॉयस जुलाई आपके लिए यहाँ पर.

0: शुरुआत हो गई है एक नया महीना. सो हाउ इज इट शुरुआत आज इस शेयर करने के लिए हम सुनी है ना, और बेशक करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 549-1294 फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. सो जहां पर भी साथ जारी हो गया है, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू इन आज का रफ्तार वाइब्स.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: Warm welcome again on Radio Masti, and yes, यहाँ पर इशारा आपको मिल गया है. We're gonna have the latest from the sports news. और यहाँ पर बिल्कुल ready तैयार हमारे साथ

0: बट अरविंद जी चलिए उनका वार्म वेलकम हम करते हैं. विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद. वेलकम वेलकम.
1: गुड आफ्टरनून हंसी जी.
0: आप कैसे हो?
1: या गुड गुड गुड. अभी सब कुछ वर्ल्ड कप मिक्स हो रहा है.
0: जोशीला मूड है हर पल.
1: और आज मॉरिशस में तो हमें पता है बहुत इंग्लैंड के फैंस हैं. सो आज दिल बी रेडी एट 8. ज्यादा रात को नहीं है क्योंकि कुछ मैच यू नो दैट 2 बजे 5 बजे. आज सुबह मैच था 5 बजे वो सी यस. तो जल्दी जल्दी उठ कर टेक्स्ट तैयार करते तो मैंने देखा कि वहाँ स्टेडियम में आस्टेका स्टेडियम में बिजली चमक रही थी. तो द मैच वॉज डिलेड बाई 1 आवर. कैन यू इमेजिन 6 बजे मैच शुरू और 6 बजे यू नो मॉरिशस में कैसे होता है. सभी लोग जल्दी जल्दी उठ कर तैयार होते हैं काम पे जाने के लिए. उसी समय मैच चल रहा है. इट्स लाइक यू नो मल्टी टास्किंग.
0: बिल्कुल सुबह जो होता है ना. लेकिन आपने क्या किया है सुबह को?
1: तो सुबह एक तरफ मैच देखो, एक तरफ टेक्स्ट प्रिपेयर करो, दूसरी ओर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो.
0: ऑलराइट. सो यहां पे व्हाट इज द लेटेस्ट अरविंद जी?
1: लेटेस्ट यह है कि इंग्लैंड की टीम आज मैदान में उतरेगी अगेंस्ट कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑन पेपर एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड कप और खिलाड़ियों के अनुभव को देखकर खासतौर पर इसमें प्रीमियर लीग के बहुत खिलाड़ी हैं. सो इंग्लैंड फेवरेट तो है लेकिन इंग्लैंड में जो डिफेंसिव फ्रेल्टी है ये फ्लैग्ड अप हुआ था इस टूर्नामेंट में. खासतौर पर जब शुरू में ही टिनो लिवरामेंटो और चेल्सी का कप्तान रिकी जेम्स दोनों इंजुरी के कारण काफ़ी रेगुलर थे इसमें. तो लिवरामेंटो को रूल आउट कर दिया गया था बिफोर द वर्ल्ड कप जबकि रिकी जेम्स को उसको रखा गया लेकिन फिर से वो घायल हो गया. सो डिफेंसिव सिलेक्शन में खासतौर पर राइट बैक में जब जनरल क्वान शाह इंजर्ड हुआ पनामा के खिलाफ तो अब कम रिसोर्सेज हैं. अब जेम्स और क्वान शाह दोनों मिस कर जाएंगे आज का मैच. अब देखना है कि इनके स्थान पर कौन आएगा. शायद जेड स्पेंस एज द लास्ट राइट बैक स्टैंडिंग या फिर सेंटर बैक एज़री कोनसा को यहाँ पर लाया जा सकता है या फिर जॉन स्टोन्स को रिकॉल किया जा सकता है. जॉर्डन पिकफोर्ड गोलकीपिंग है लेकिन डिफेंस अनसेटल्ड है. सो टुरेल स्टोन्स और कोनसा के साथ शुरू कर सकता है. फिर देखना है क्या होगा. अभी इस मैच में कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि ये टीम जो है कोंगो की टीम नहीं खेलेगी. दे हैव रीच देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. दे विल टेक ऑल देयर चांस. 8 बजे ये मैच. फिर आज रात मिडनाइट किक ऑफ बेल्जियम वर्सेस सेनेगल. ये भी कम रोचक मैच नहीं है क्योंकि बेल्जियम की टीम शुरुआत इनकी धीमी रही थी बट दे मैनेज टू गेट द 3 points इन द लास्ट मैच और अल्टीमेटली ग्रुप में पहले स्थान पर आए और क्वालिफाई हुए. उनके सामने है सेनेगल की टीम जिसने इराक को हराया था 5-0 से और दे आर इन फुल स्विंग फुल मोमेंटम. साजो माने अभी तक अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड कर रहा है. और कल सुबह कितने बजे? 4 बजे. हाँ सुबह 4 बजे यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बोस्निया. यूनाइटेड स्टेट्स की टीम कनाडा और मेक्सिको की तरह भी अपनी सरजमीन पर क्वालिफाई होना चाहेगी फॉर द फर्स्ट टाइम टू दिस राउंड. बोस्निया की टीम में अनुभव है और इनसे बच के रहना होगा. स्पेन बिग फेवरेट फॉर टू विन द वर्ल्ड कप. उनका मुकाबला कल होगा ऑस्ट्रिया से ये रात्रि के 11 बजे. सो जैसे जैसे हम बेस्ट ऑफ 32 राउंड को पार करते जा रहे हैं एक एक करके सभी टीमें एक टीम इन एक टीम आउट. तो इतना कुछ इन सभी मैचों को लेकर. और जैसे जैसे कुछ टीमें आगे जा रही हैं कुछ एलिमिनेट हो रही हैं कुछ मैनेजर भी उनको निकाले जा रहे हैं. अब क्या होगा? अब ये बैटल जो है एम्बापे और लियोनेल मेसी के बीच इसको लेकर देखा जाएगा कि गोल्डन बूट कौन जीतेगा और अल्टीमेटली वर्ल्ड कप के अंत में हु विल बिकम दी यानी अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला. एम्बापे ने खुद कहा मेसी विल स्कोर मोर गोल्स. कल उसने डबल पूरा किया. मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी लगभग हो चुकी है. तब अब क्या होगा देखते हैं. हमने बताया था शुरू में कि इस वर्ल्ड कप में काफी चेंजेस आ रही हैं और उनमें से एक चेंज है कि जब किसी प्लेयर को कन्फ्रंट करो या फिर रेफरी को कन्फ्रंट करो तो मुंह धक्को मत हाथ से या फिर टी शर्ट से. कल हिनकापी ने ऐसा ही किया एंड ही वाज द सेकंड प्लेयर टू बी सेंट ऑफ फॉर कवरिंग माउथ. इक्वाडोर के पीए हिनकापी

0: आर्सेनल का डिफेंडर ये दूसरा खिलाड़ी बना सस्पेंड होने वाला पहला खिलाड़ी था पाराग्वे का मिगुएल अलमिरन एल्स टेनिस भी जारी है विंबलडन ओपन और आज के जो मैच है काफी इंटरेस्टिंग होंगे अभी सीना और ब्रोगर्स के बीच मैच शुरू हो गया है थोड़ी देर बाद अंद्रीवा खेलेगी क्रिचकोवा के खिलाफ सित्सिपास जोकोविच सबालेंका भी कैसलर के खिलाफ 5-1 से आगे है द फर्स्ट सेट सियेरा खेलेगी गोव के खिलाफ और आज मेंस सिंगल में ही राउंड ऑफ 64 में ओगा अलियासी में अगेंस्ट प्रिज्मिच ओसाका जीत गई गाजानोवा को हराकर 6-3, 6-2 और कोबोली नावोने के बीच तगड़ा मैच चल रहा है अभी पहला सेट नावोने ने जीता दूसरा सेट कोबोली ने तीसरा सेट कोबोली और अभी जो चौथा सेट है दोनों 6-6 पर हैं मेदवेदेव आज खेलेगा मेरिडा के खिलाफ पेगुला सोरिबेस टोमो और जुदा खेलेगा कारेनो बुस्ता के खिलाफ पोल अपना मैच जीत गया है अभी क्रिकेट में भारतीय टीम इंग्लैंड में है टी ट्वेंटी सीरीज के लिए आज रात इंग्लैंड और इंडिया के बीच मैच ये काफ़ी देर से शुरू होगा 8:30 और इसमें भारतीय टीम जो अभी हाल ही में डबलिन से आयरलैंड के खिलाफ हार कर आई है टीम में चेंजेस लाए जाएंगे सूर्यवंशी को लाया जाएगा दीज आर द बिग क्वेश्चंस लेकिन क्रिकेट पंडितों का मानना है कि इट्स टू अर्ली सूर्यवंशी के लिए क्योंकि इंग्लैंड के पिच जो हैं आसान नहीं होते लेकिन बहुत क्रिकेट पंडित ये भी कह रहे हैं कि पिछले साल जो अंडर 19 टीम गई हुई थी इंग्लैंड वहां पर टॉप स्कोरर सूर्यवंशी ही रहा और वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल दूसरा मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बहुत कुछ होगा आज लेट्स होप द बेस्ट टीम विन क्योंकि ये कहना कि ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी इट्स अ बिट डिफिकल्ट लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं उसको भूत प्रेत यू नो हाँ पाउडर उस पर भी मानते हैं गाना का एक है जूजू नाम है उसका okay. और उसने प्रेडिक्ट किया है उसने प्रेडिक्ट किया है कि केप वर्डे अर्जेंटीना को हराएगा पिछली बार उसने कहा था कि उसने जादू टोना करके केन का पैर बांध रखा था केन गोल स्कोर नहीं कर पाया था अब उसने कहा है कि केप वर्डे अर्जेंटीना को हराएगा बट दैट्स सुपरस्टिशन और होता है वर्ल्ड कप में टेंशन के बीच ये छोटी मोटी बातें
1: होती रहती है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है बिल्कुल सो यानी कि ऑल सेट फॉर आज का टनाइट मैच 8 PM और अरविंद ये तो है कि इंग्लैंड टीम इज गोइंग स्ट्रॉन्ग
0: कोंगो है उनके सामने कोंगो बिग रेफरेंस नहीं है बट दे डिड वेल इन द ग्रुप स्टेज इंग्लैंड की टीम उसमें जैसे शुरू में बताया दे गॉट सम डिफेंसिव फ्रेल्टीज और इस डिफेंसिव फ्रेल्टी को अगर यहां पर नहीं सुधारेंगे तो आगे चलकर इफ दे मैनेज टू गो बियॉन्ड कोंगो आज उनके सामने है इंतजार कर रही है मेक्सिको मेक्सिको की टीम आज सुबह 2-0 से जीत पाए और दे आर दी Only team not to concede a single goal. Or Azteca Stadium mein jab koi khelta hai, so it's like Liverpool playing in Anfield Road or Manchester United playing in Old Trafford. Baki teamein aakar, jaise kehte hain, thar-thari hoti hai. To England ka intezar कर रही है मेक्सिको की टीम
1: लेकिन दिन ब दिन जो मैचेस है वो तो और भी तगड़ा होता जाएगा
0: जीतो तो आगे बढ़ो हारो तो बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाओ
1: ऑलराइट थैंक यू सो मच अरविंद फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Oui, cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: देखो।
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्टेड।

0: right, jolly good songs on Radio Masti and this is your Raftar Vibes. वैसे गानों में रफ्तार तो ज़रूर है लेकिन ड्राइव करते समय प्लीज़ नो रफ्तार. आप आराम से इत्मीनान से गाड़ी चलाएं और जहां तहां स्पीड लिमिट्स रखे गए हैं टू रिस्पेक्ट एंड एंजॉय योर ड्राइव. लेकिन जहां पर कुछ ट्रैफिक चल रही है मेंटेन योर पेशेंस, धैर्य जो है बिल्कुल उनको कायम में रखें. कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंस नहीं होता क्योंकि घर जाने की जल्दी है ना, लेकिन क्या करें, वी आर स्टक. और आपको तो पता है जब ऐसी सिचुएशन है, ऐसी हालात होती है तो आपका हम सफ़र बन जाता है द वन एंड ओनली रेडियो मस्ती. तो आपका सफ़र एकदम सुरक्षित रहे, आप घर सेफ एंड साउंड पहुंचे, यही गुड विशेस हम लेकर आए हैं सबके लिए. एंड डोंट फॉरगेट सीट बेल्ट ज़रूर बांधे रखें. और हाँ, गाड़ी चलाते समय प्लीज़ नो मोबाइल फ़ोन, उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो ऐसे में ड्राइविंग विल बी क्वाइट डेंजरस. इसीलिए मोबाइल फ़ोन को साइड में रखें. और क्या चाहिए जब रेडियो मस्ती का साथ है, इतने अच्छे जगाने हम लेकर आ रहे हैं टू एंटरटेन यू, तो बस और क्या चाहिए, टू मेक इट फन, टू मेक इट लविंग, राइट. सो स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए वी हैव गॉट अ प्लेजेंट लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स जो आपके साथ ज़रूर हम देने वाले हैं आफ्टर 6 PM. अगर अभी आपने अपना रेडियो सेट ऑन कर लिया है, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन. आई विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. यहाँ पर हंसनी है आपके साथ. दिस इज आवर रफ्तार वाइब्स.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2.

0: और इससे ड्राइव टाइम में ये जो गाना अभी चलाना ये तो बिल्कुल फिट होता है राइट. सो ऐसे ही कीप एंजॉयिंग योर ड्राइव, आपके म्यूजिकल राइड को आप एंजॉय करते रहिए वेदर रेडियो मस्ती. वैसे सड़क पर एक नज़र और रेडियो पर आपका दिल, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि सफ़र तभी बनता है यादगार जब ऐसे म्यूजिक हम चलाते रहेंगे आपके लिए. ट्रैफिक चाहे कितना भी लंबा हो, अगर म्यूजिक का साथ हो तो क्या होता है, हर रास्ता बिल्कुल आसान लगता है. तो अब तक जो सफ़र आपने तय किया है, मे बी रोड ट्रिप, वो कौन सा सबसे यादगार बना है आपके लिए? अभी नहीं, बाद में यू कैन टेल मी जब आप फ्री होंगे तो. एंड मैसेजेस ये तो बिल्कुल इंतज़ार हम करेंगे ऑन 5499 1294. और यहाँ पर बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ हम गाने लेकर आए हैं टू एंटरटेन यू, ताकि जो आज का स्ट्रेस है वो बिल्कुल दूर हो जाए. दिन जैसा भी होना, मे बी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई है, दिन कुछ खराब सा था, ओवरलोड वर्क की वजह से मूड काफ़ी कुछ खराब, स्ट्रेस की वजह से नॉट फीलिंग सो वेल सो गुड. लेकिन म्यूजिक का जादू तो यही होता है ना, यहाँ पर सेट कर लेते हैं म्यूजिक, म्यूजिकल जर्नी जहाँ पर मूड को हम बदल लेते हैं. ये तो है द मैजिक ऑफ म्यूजिक एंड द मैजिक ऑफ रेडियो मस्ती. स्टे वेल कनेक्टेड फॉर द बेस्ट ऑफ म्यूजिक फॉर रफ्तार वाइब्स. एंड हंसनी इज हियर टू रीड योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. हेलो टू एवरीवन, मैं हूँ कविता, लिसनिंग टू रफ्तार वाइब्स, एंजॉयिंग द शो. थैंक यू कविता जी. यहाँ पर गाना फॉर माय फ्रेंड नालिनी के लिए, सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू नालिनी जी, हैप्पी बर्थडे आपको. एंड वी हैव नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर यू, एंजॉयिंग अ ड्राइव टुगेदर, दोस्ती जो बस कायम है. विशिंग यू अ हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड अ हैप्पी फ्रेंडशिप राइड एज वेल. गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थडे टुगेदर, सो एक गाना तो बनता है आप दोनों के लिए. हैव फन.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2.

0: पर कलेक्शन तो बिल्कुल मदमस्त है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर मस्त है ये माहौल, ये म्यूजिकल जर्नी, तो मदमस्त तो बनते रहेंगे हमारे गाने. दिस इज आवर रफ्तार वाइब्स ब्रिंगिंग यू ओनली द बेस्ट. और अभी जो आपका कनेक्शन बन गया है विद आवर रेडियो शो, तो यहाँ पर टाइम हो चला है टू हैव सम डेडिकेशंस. हेलो टू द ब्यूटीफुल गायत्री जी, कैसी हो? वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. वाली हो कि सब ठीक है. और अभी ड्राइव करते समय साथ जारी है, सो टू एड ऑन एक गाना आपके लिए और आपके क्यूट परिवार के लिए, टू विश यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग अहेड, हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम. We have the message coming from Taran. Hello, G. Wish you a very good afternoon. Same to you. Next one for my love Gina के लिए. I want to tell her she is very special. वो बहुत ही खास है मेरे लिए. तो एक romantic गाना please मेरे लिए हो जाए. Of course, romantic गाना. और coming up is a beautiful souvenir that will be 90s. So यहाँ पर जो ambiance है set हो गया है. प्यार के साथ दोस्ती है, अपनापन है, ये आशिक की जुस्तजू, सब कुछ है. दिस इज द फुल ऑन एंटरटेनमेंट शो. दिस इज रफ्तार वाइब्स. विशाल जी, हेलो एंड वेलकम टू यू. नेक्स्ट गाना फॉर सरिता के लिए, विशिंग हर हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द गुड विशेस आप लेकर आए हैं उन्हीं के लिए. एंड वो तो जा रही है घर वापस अभी, शी इज बी टायर्ड, थकी हुई है. तो आई एम श्योर जो अगला गाना होने वाला है उनकी थकान को दूर करने के लिए एंड ऑफकोर्स उनको विश करने के लिए अ वेरी हैप्पी वाला. So, अगर आपके पास भी कोई है मैसेज जो बहुत ही खास है, दिल से कुछ कहना आप चाहेंगे, सो आई एम हियर. हम सुनी है आपके साथ 7 बजे तक. विल बी वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2.

0: स्वागत है आपका ऑन रेडियो मस्ती और यहाँ पर बिल्कुल हम सेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए रफ्तार वाइब्स और यहाँ पर आज फैशन टिप जो है हाउ टू लुक मोर स्टाइलिश एंड हाउ टू लुक मोर ग्लैमरस। तो यहाँ पर एक ऐसा कलर जो सीजनल तो नहीं है बल्कि हम हर सीजन में बिल्कुल पहन सकते हैं, इट्स लाइक टू मेक अस लुक मोर ग्लैमरस एंड स्टाइलिश लेडीज के लिए। तो दैट विल बी आज टिप अबाउट ब्लू कलर, राइट। तो हम कहाँ पहने और कैसे पहने, किस शेड ऑफ ब्लू को हम चूज कर सकते हैं, ये एक छोटा सा टिप आपके लिए। और यहाँ पर आज यानी कि आज नहीं बल्कि कल, आज तो काम पर आप तो चले गए हो एंड यू आर बैक होम, राइट। लेकिन कल अगर आप जाएंगे ऑफिस या फिर जाएंगे काम पर तो आप चूज़ करेंगे शेड ऑफ ब्लू, तो कौन सा आप चुनने वाले हो। तो यहाँ पर चूज़ करेंगे ब्लू ब्लू लाइक डेनिम जीन को चूज़ करेंगे, तो उसमें फिट हो जाएगा एक वाइट टॉप एकदम लाइक टू मेक यू लुक मोर स्टाइलिश। एंड मिक्स टेक्सचर्स के बारे में बात करें तो कंबाइन ब्लू फैब्रिक्स जैसे कि डेनिम, कॉटन, सिल्क या फिर नीटवेयर एक विजुअल इंटरेस्ट जैसा हो जाएगा, विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। और ब्लू को पहने विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा ये मानना है ब्लू इज़ लाइक अ टाइमलेस कलर जो मैनी स्किन टोन्स को सूट कर लेता है एंड नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। तो बाय चांस अगर आपके कलेक्शन में नेक्स्ट डे के लिए ब्लू कलर है, सो दैट्स लिटिल टिप जो आपको देने वाले हैं अ फ्रेश एंड रिलैक्स्ड लुक। एंड पेयर ब्लू विद न्यूट्रल कलर्स, तो ब्लू के साथ एकदम वाइट फिट होता है, ब्लैक फिट होता है, बेज या फिर ग्रे कॉम्प्लीमेंट ब्लू बिल्कुल ब्यूटीफुल लुक दे ही देता है। सो डू ट्राई कल एंड लुक मोर ग्लैमरस। ये था आज का सिंपल फैशन टिप आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती फॉर आज का रफ्तार वाइब्स।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

लेकिन अभी इशारा है कि कुछ पल में हम बढ़ेंगे ठीक 6 बजे के समाचार बुलेटिन की तरफ, और इसके बाद हंसनी से जरूर आप से मिलने वाले हैं। हमारी मुलाकात जो है वो तो होती रहती है, होती रहेगी ऑन द वॉइस ऑफ रेडियो मिर्ची। स्टे वेल कनेक्टेड।

0: सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। पहली जुलाई बुधवार का दिन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सचिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्टलिस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये चार परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार पर विशेषज्ञ आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दस्तावेज में मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 3 स्तंभ दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है परामर्शों के आधार पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्याप्त, टिकाऊ और निष्पक्ष हों। बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम कम किए गए हैं। इस नियम के लागू होते ही व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने आज कुछ बड़ी दुकानों का दौरा किया। कोपरनिकस मैरीन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया के महासागरों में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया गया है, जिनका औसतन तापमान 20.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग के मिले जुले असर से 2026 में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार को विशेषज्ञ आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इस दस्तावेज में मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 3 स्तंभ दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है परामर्शों के आधार पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्याप्त, टिकाऊ और निष्पक्ष हो। 271 पृष्ठों की ये रिपोर्ट, जिसमें मींस टेस्ट का प्रस्ताव दिया गया था, उसे बजट भाषण में शामिल किए जाने के बाद फ्रीज कर दी गई। कुनागुजी की रिपोर्ट पर यशराम मिश्रा का विवरण।
1: द फंडिंग डेफिसिट इन द पेंशन स्कीम्स ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडीज वाज एस्टिमेटेड एट 53 बिलियन।

0: Peace, while that at the NPF stood at 113 billion rupees, representing a combined deficit of 166 billion rupees, that is more than 20% of the current GDP. As the actuarial valuation for the NPF dates back to 2020, it is very likely that the financial position of the pension fund has deteriorated further, owing, among others, to the increasing life expectancy among scheme members and pensioners and the contribution rates that have not kept pace with the scheme's long-term funding requirements. The previous government has done nothing, absolutely nothing, to address the structural challenges facing the pension system in a comprehensive and timely manner. On the contrary, it has aggravated the situation with its irresponsible decisions and the introduction of the CSG, and these have compounded the deficits and the unsustainability of the pension system.
1: राष्ट्रीय सभा में कल दूसरी पढ़त पर डोमेस्टिक अब्यूज बिल प्रस्तुत किया गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री ने कहा कि ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाएगा और इसमें आर्थिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। मंत्री आर्याना वोमागी ने बताया कि इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल में प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघनों के लिए सजा देने का प्रावधान है। हिंसा के शिकार लोगों का सहयोग भी इसमें शामिल है। इसी उपलक्ष्य में सोशल इंटीग्रेशन और समाज सुरक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सॉलिडारिटी फंड के तहत हिंसा के शिकार लोगों के लिए एक एलोकेशन का प्रावधान किया गया है। शेल्टर में बिताए गए 2 महीनों की अवधि के लिए इससे ये लोग मूलभूत सामान खरीद पाएंगे।
3: Cette aide permettra aux victimes d'accéder à leurs besoins essentiels grâce à l'allocation qu'elles percevront.
2: Exclusion order bhi isme shamil kiya ja raha hai.
3: Lorsque la cohabitation continue représente un risque.
2: Jab saath rehna khatarnak ho to hinsa karne wale ko wahan se jana padega. हिंसा के शिकार व्यक्ति को अपने बच्चों या घर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खतरा उसने नहीं बल्कि उसके साथी ने पैदा किया है। यदि ये संभव न हो तो अदालत हिंसा करने वाले को अपने साथी के लिए आवास की व्यवस्था करने का आदेश दे सकता है। जिम्मेदारी उसकी है जिसने खतरा पैदा किया है और न कि जो दर्द सहता आया है।
3: La charge incombe à celui qui a créé le danger et non à celle qui en a souffert.
2: Domestic abuse bill के तहत जानकारी देने की प्रक्रिया को बेहतरीन किया जाएगा।
3: En outre, en cas de manquement à une ordonnance d'abus domestique signalé à un poste de police.
2: यदि घरेलू हिंसा को लेकर कोई ऑर्डर नहीं तो एक व्यक्ति देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच भी तुरंत शुरू की जानी चाहिए। अब से 14 के बदले ट्राइब्यूनल के पास 7 दिनों का समय होगा आरोपी को पेश कराने के लिए।
3: Par ailleurs, madame la présidente, le tribunal disposera dorénavant de 7 jours au lieu de 14 jours à compter de la date de la demande pour convoquer la personne mise en cause et statuer.
2: घरेलू हिंसा से संबंधित इस विधेयक में आदेशों और कानूनी नोटिसों का पालन न करने पर अधिक कड़े जुर्माने और सख्त कारावास की सजा का भी प्रावधान है। घरेलू हिंसा के दोषियों के पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रावधान है। इसके लिए डोमेस्टिक अब्यूज कोऑर्डिनेटिंग पैनल का गठन किया जाएगा।
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। सर शिवसागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्ट लुइस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये 4 परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है। ये फंडिंग

0: उस 31 बिलियन रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में डॉक्टर नवीन रामगुलाम की यात्रा के दौरान बातचीत हुई थी। बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम कम किए गए हैं। इस नियम के लागू होते ही व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने आज कुछ बड़ी दुकानों का दौरा किया। 2026-2027 का वित्तीय साल मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मॉरिशस एक्सप्रेस सिस्टम की कारगरता बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कर्ज धीरे धीरे चुकाने, लागत पर नियंत्रण पाने, नेटवर्क को आधुनिक बनाने और तोड़फोड़ से निपटने के लिए नए कदमों पर आधारित योजना का ऐलान किया है। आज पोर्टलिस में क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये जानकारियाँ दी। इस रिपोर्ट में मेट्रो एक्सप्रेस के उन फायदों पर जोर दिया गया जो यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ज्यादा है। अध्ययन के अनुसार ये नेटवर्क सालाना तौर पर 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक योगदान देता है। बजट 2026-2027 में फ्लैक के डॉक्टर ब्रूनो चोंग मेडिकल सेंटर में एक रेजिडेंशियल रिहैबिलिटेशन केंद्र यानी एक नशा मुक्त केंद्र की स्थापना करने की योजना शामिल है। मकसद है नशा करने वालों को बेहतर मदद उपलब्ध कराना। इस परियोजना से जुड़े अन्य साझेदारों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि ज्यादा व्यापक सेवाओं वाले इस केंद्र के कार्यरत होने तक इस इलाके में नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज अभी एडिक्शन यूनिट में किया जा रहा है जो डॉक्टर ब्रूनो चोंग सेंटर का ही एक हिस्सा है। रिया रामोजन की रिपोर्ट पर एक बार फिर याचना मिश्रा का विवरण।
1: 43 साल का ये व्यक्ति अपॉइंटमेंट पर आया है। पिछले लगभग 7 सालों से वो नियमित रूप से मेथाडोन उपचार के लिए इस केंद्र में आ रहा है। ये इकाई पिछले 10 सालों से अधिक समय से चल रही है और यहाँ प्रतिदिन लगभग 20 मरीज आते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी अन्य निःशुल्क और गोपनीय सेवाएं भी उपलब्ध है। हम व्यक्ति के साथ साथ परिवार से भी बात करते हैं ताकि व्यक्ति को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। इन सेवाओं के अलावा नशे के आदि लोगों के पुनर्वास में रिहैबिलिटेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर ब्रूनो चोंग सेंटर को एक आवासीय पुनर्वास केंद्र में बदला जा रहा है। पूर्वी इलाके में पहली ऐसी योजना। पूर्वी इलाके का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है जहां रिहैबिलिटेशन केंद्र नहीं है ड्रग्स और एचआईवी के मरीजों के लिए। अब हम कह सकते हैं कि बेहतरीन उपचार दिया जा सकेगा। इस परियोजना के लिए कई संबंधित पक्षों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। NGOs का सहयोग जरूरी है जो अधिकारियों और ड्रग्स के आदियों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने के अलावा बजट में प्रत्येक मंत्रालय को नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 मिलियन रुपए का प्रावधान भी किया गया है।
0: अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मॉरिशस में नवाचार और कारोबारिता पर आधारित एक इकोसिस्टम धीरे धीरे आकार ले रहा है। बजट 2026-2027 में इस विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम निर्धारित किए गए हैं जिनमें एक स्टार्टअप एक्ट की स्थापना, EDB के अंतर्गत एक एक्सेलरेटर स्कीम, कदो में भावी इकोनॉमिक जोन में एक हब तथा कामकाज शुरू करने के बाद 10 साल की अवधि के लिए टैक्स की छूट आदि कदम शामिल हैं। इन पहलों का मकसद ऐसा माहौल कायम करना है जो देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य चालक बने। अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भरता से आगे बढ़कर निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारी पर ध्यान देने का मकसद तय किया है। इसी सोच के साथ कल अफ्रीका बियॉन्ड एड सम्मेलन शुरू किया गया जिसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, ठेकेदार और निवेशक शामिल हुए हैं। मकसद है मॉरिशस और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच व्यापार मजबूत और कारोबार के मौके पैदा करना। इस पर आदरणीय वाले की रिपोर्ट पर गीता स्नान का विवरण।

0: मदद से व्यापार की ओर, निर्भरता से संपत्ति सृजन की ओर, यही नई दिशा अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने प्रस्तुत की है, जिसका उद्घाटन इस बुधवार बालाक्लावा में हुआ। इस सम्मेलन में अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आयोजकों का मानना है कि तेजी से बदलते अफ्रीकी महाद्वीप में मॉरिशस की कंपनियों के लिए नए अवसर मौजूद हैं। वहीं मॉरिशस अफ्रीकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक पहुंचने के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। GCIL कंट्री डायरेक्टर मीनाक्षी ओबिलक कहती हैं, यहाँ उन्हें सीधा संपर्क मिलता है ताकि वे अपनी पैदावारों या सेवाओं का निर्यात कर सके। कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जैसे निवेश, सहयोग आदि।
1: Tout ça peut prendre vie là pendant que nous causons avec vous.
2: It is a strategic summit for us.
0: Global Center for Innovative Leaders के संस्थापक कहते हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अफ्रीका में आपके जैसे दूरदर्शी नेता हैं, साहसी SMEs और ठेकेदार हैं, जो एक ऐसा अफ्रीका स्थापित करना चाहते हैं जो निवेश, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत हो। अफ्रीकी महाद्वीप छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कई संभावनाएं प्रदान करता है। ये शिखर सम्मेलन विभिन्न देशों से आए निवेशकों और व्यावसायिक साझेदारों के साथ संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कंसल्ट प्लस अफ्रीका के CEO डाविना गोवर्धन कहती हैं,
3: Très belle opportunité de networking.
0: ये नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा अवसर है, ये देखने के लिए कि अफ्रीका के स्तर पर एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, कई तरह के निवेश पर चर्चा कर सकते हैं, साझेदारी और आदान प्रदान पर भी, हुनर, योग्यता और प्रशिक्षण के स्तर पर। मॉरिशस भी अपने अनेक लाभों का उपयोग कर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना चाहता है। एक प्रतिष्ठित वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ यहाँ का मजबूत कानूनी ढांचा और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के साथ हुए व्यापारिक समझौते इसे विशेष बनाते हैं। साथ ही डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुद्दो में विकसित किए जा रहे भविष्य के टेक्नोलॉजी हब के माध्यम से मॉरिशस अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। विदेश मंत्री धनंजय रामफल कहते हैं,
4: Maurice Finci, plusieurs bandes d'accord qui vont faire ressortir nos membres de la SADC, ce qui nous appelle le African Continental Free Trade Agreement.
0: Mauritius ne kai santhiyon par hastakshar kiye hain. Inme SADC ke sadasya hain, African Continental Free Trade Agreement hain. Niveshak Mauritius ko ek manch ke roop mein istemal kar sakte hain, jisse ve in deshon tak pahunch pa sake aur Afrika mein nivesh kar sake. इस शिखर सम्मेलन के अंत में आयोजकों को उम्मीद है कि यहां हुई बातचीत लंबे समय की साझेदारियों और नए निवेशकों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उनका लक्ष्य मॉरिशस और अफ्रीकी बाजार में प्रवेश के लिए एक प्रमुख और विश्वसनीय द्वार के रूप में और ज्यादा मजबूत करना है।
5: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पर्सनल डिजिटल डेटा का क्या होता है, डॉक्टर शिबा ओमुगम ने इस विषय पर एक अध्ययन चलाया। इस पर एक पुस्तक प्रकाशित की, शीर्षक है डिजिटल ऑफ द लाइफ, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ, टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस। राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये किया जाएगा। आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज़, ब्रेकिंग, फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल हैं, लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है। कल एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट प्रेस से उन्होंने मुलाकात की और इस साल 2026 के पहले 6 महीनों का ब्यौरा पेश किया गया, जहां कई जब्ती, ड्रग तस्करी और नए चालान और जनता की राय के बारे में भी खुलासा की गई। मंदिर और पूजा पद्धतियां केवल पत्थर की संरचनाएं या मात्र कर्मकांड नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात दैवीय ऊर्जा के केंद्र हैं। इन पवित्र स्थलों की दिव्यता को अक्षुण बनाए रखने और परमात्मा के साथ भक्त के गहरे जुड़ाव को अनुभव करने के लिए कई विशेष अनुष्ठानों का विधान है। महासंप्रोक्षणम और श्री विष्णु कल्याणम ऐसे ही दो अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक आयोजन हैं, जहां

महासंप्रोक्षणम श्री सत्यनारायण स्वामी आलयम के शुद्धिकरण और उसकी ऊर्जा को नवीनीकृत करने का उत्सव है। वहीं श्री विष्णु कल्याणम भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन के माध्यम से भक्तों के जीवन में सुख शांति और सौभाग्य का संचार करता है।

0: कुछ देर पहले जैसे हम आपको बता रही थी कि बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम किए गए हैं।
1: दुकानों के शेल्फ पर अब नए दामों के लेबल उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन लेबलों पर दो अनिवार्य जानकारियां दी गई हैं। पहली MRP और दूसरी SP यानी सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि।
2: Peut-être il y a certains produits qui ont baissé, mais pas tout. Un petit peu plus raisonnable pour ben du monde qui cherche, ou ben moyen, je suis capable de battre. Mais parce qu'avant, c'est trop cher même.
3: À cette époque, on n'est pas capable. Déjà, baissé un petit peu.
4: Tu voudrais plus baisser.
1: स्थल पर व्यापार मंत्रालय के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि नई व्यवस्थाओं को व्यापारी लागू कर रहे हैं या नहीं।
5: Nouvelle touche 485 produits. Et il est bon que la population rappelle qu'en août, le programme du Price Stabilization Fund vient commencer avec 5 produits de base. À partir d'aujourd'hui, nous mettons encore 7 produits additionnels. Nous commençons par le macaroni, pour une baisse de 10 roupies. Le ban grain sec, une baisse de 10 roupies. Le ban thon en boîte, c'est une baisse de 20 roupies. Et nourriture pour bébé, c'est une baisse de 15 roupies. Pour les cornes mouton et cornes beef, une baisse de 20 roupies.
1: इस सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं की राय मिली जुली रही। कुछ लोगों ने कीमतों में आई कमी का स्वागत किया, जबकि अन्य का कहना है कि यदि जीवन यापन की बढ़ती लागत पर वास्तविक प्रभाव डालना है तो इस योजना का दायरा और अधिक उत्पादों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
6: Moi j'ai l'habitude de petit carnet. Alors tout le temps je fais provision et je regarde les prix. Mais là le monsieur vient de m'expliquer, il faut revoir parce que le MRP, on avait déjà entendu parler, le ministre avait parlé de ça. Mais là maintenant quand le public vient, il voit ça, c'est encore meilleur.
7: Nous faisons une vérification sur place pour assurer que tout bon prix qui préconisait d'après la loi doit être respecté par tous les commerçants. Donc nous dire que tout bon produit qui est exposé pour vendre qui n'a sa subside là-dessus, donc le commerçant doit afficher le prix en son MRP.
1: अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित व्यापारिक व्यवहार दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
7: Nous invitons le public et nous faisons du travail et pour contacter nous c'est le hotline 185 ou car aussi contacter nous sur le WhatsApp 5942888 ou car venir par email le consumerpu@gov.org.
1: व्यापार मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यापारी सब्सिडी वाले उत्पादों की खरीद पर सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता का लाभ सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से पहुंचे।
0: और जैसे सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि सचिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्टलिस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये चार परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है, जो उस 31 बिलियन रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की यात्रा के दौरान बातचीत हुई। मिगान पनपनाई कैन की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
1: रविवार को सिशेल्स में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि भारत ने मॉरिशस को लगभग 20.5 बिलियन मॉरिशियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग मुख्य रूप से चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इनमें शशि सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, M4 हाईवे, रिंग रोड परियोजना का दूसरा चरण और बंदरगाह के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल कहते हैं,

0: pour une assez bien stratégique. Quand nous prenons beaucoup de bateaux qui peuvent venir, alors il y a pourtant aussi qui nous le pour et dans l'infrastructure nécessaire pour qu'elle délivre. Après, c'est dans ce projet de Ring Road là, qui est un projet depuis assez longtemps, une cause ça, et là, il peut être matérialisé grâce à sa ligne de crédit. Et un autre projet, sa Control Tower là aussi. Et là, dans ce budget-là, nous finissons annoncer et nous finissons gagner le financement nécessaire pour qu'ils nous capables de financer ce projet-là.
1: ये लाइन ऑफ क्रेडिट कुल 31 बिलियन मॉरिशन रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा हैं, जिस पर सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। इस पैकेज में 10 बिलियन मॉरिशन रुपए का अनुदान भी शामिल है। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं,
2: इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड,
1: यदि इसके व्यापक स्तर की बात करें तो ये संभवतः दुनिया भर में लागू किए जाने वाले हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारी कार्यक्रमों में से एक होगा। अप्रैल महीने में हमने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अनुदान प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय की गई थी। अब हमने इस लाइन ऑफ क्रेडिट की भी औपचारिक पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही फाइनेंसिंग समझौते और विशेष आर्थिक पैकेज SEP के अंतर्गत आने वाली सभी 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ढांचा पूरी तरह से अंतिम रूप ले चुका है। दोनों पक्षों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा पहले ही तय की जा चुकी है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट पर बहुत कम ब्याज दर लागू होगी, इससे इन परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। मंत्री रितेश रामफल कहते हैं,
0: qui a un taux très très préférentiel à 2%, right? Qui est très minime comparé à une ligne de crédit, une loan qui est ouverte avec une institution financière. Je vous reconnais d'ailleurs qu'il aide Maurice à chaque fois qu'il nous donne le besoin.
1: Shri Anurag Vastava कहते हैं, ये मॉरिशस के प्रति हमारे समर्थन की एक ठोस और स्पष्ट प्रतिबद्धता है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम मॉरिशस के सबसे बड़े विकास साझेदार हैं। विशेष आर्थिक पैकेज SEP के तहत शुरू की गई ये नई परियोजनाएं मॉरिशस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, देश में बेहतर संपर्क व्यवस्था करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मॉरिशस के लोगों के कल्याण एवं विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर इस लाइन ऑफ क्रेडिट का एक हिस्सा भविष्य में अन्य विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
3: कोपरनिकस मैरीन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया के महासागरों में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया गया है, जिनका औसतन तापमान 20.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग की मिले जुले असर से 2026 में नए रिकॉर्ड बन सकती हैं। बात करें फुटबॉल के बारे में, कोत द्वीवर यानी कि आइवरी कोस्ट का 2026 विश्व कप का सफर यही खत्म हो गया। एलिफेंट्स ने नॉर्वे के खिलाफ जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन राउंड ऑफ 32 में जिन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, मैच के आखिर में अर्लिंग हालैंड के निर्णायक गोल की बदौलत स्कैंडिनेवियन टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला ब्राजील से होगा। अरविंद बिसेसर का विवरण।
4: वर्ल्ड कप 2026 में आइवरी कोस्ट का सुहाना सफर पूरा हुआ। सुहाना सफर इसलिए क्योंकि पहली बार के लिए ये टीम यहां तक पहुंची। नॉर्वे के खिलाफ अफ्रीकी हाथ ही लोग डट कर सामना करते रहे, पर अर्लिंग हालैंड के होते काम मुश्किल था। मैच में पहला गोल फर्स्ट हाफ में बनता है, एंटोनियो न्यूसो का गोल 39वें मिनट पर। सेकेंड हाफ में आइवरी कोस्ट में जान आई और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी अमाद जालो इक्वलाइज करता है 74वें मिनट पर।
5: Absolutely sensational goal.
4: यहां से दोनों टीम आक्रामक रुख अपना चुकी थी, पर जब अर्लिंग हालैंड जो यहां तक चुप था अपना छाप छोड़ता है इस गोल के साथ। इस गोल से नॉर्वे की टीम क्वालिफाई 2-1 के स्कोर पर। बेस्ट ऑफ 16 राउंड में वीकेंड फिनाल में नॉर्वे और ब्राजील के बीच धमासान टकराव होगा। आइवरी कोस्ट को अलविदा, पर नॉकआउट राउंड में पहली बार आए, खूब संघर्ष करके जा रहे हैं।
3: 2026

वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 जारी है. आज रात दो बड़े मुकाबले होने हैं. बेल्जियम का सामना सेनेगाल से होगा, जो एक जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है, और इसके बाद को होस्ट अमरीका का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा. ये दोनों ही महत्वपूर्ण मैच हैं, जिनमें राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने के लिए दो स्टॉप दाव पर है.

0: अरविंद भी से सर्दी रही हैं।
1: बेल्जियम की टीम को जाबलो रूज नाम दिया गया है, मतलब लाल भूत। इनका सामना टेरेंग अलायंस से होगा। दोनों दबोचने के लिए तैयार हैं। बेल्जियम अपना आखिरी मैच जीत के ग्रुप टॉप कर गया था। धीरे धीरे इस टीम ने रफ्तार पकड़ा और केविन डे ब्रुइन, लियांड्रो ट्रोसा, थिबो कुर्तुआ के अनुभव काम आएंगे इस मैच में। सामने है सेनेगल की टीम, 5-0 से इराक को पछाड़ कर क्वालिफाई हुए। साजो माने, इस्माइला सा, ये लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं। एडवा मेंडी खेलेगा या नहीं अभी तक पता नहीं। उधर सैन फ्रांसिस्को में मेजबान टीम यूएसए मैदान में उतरेगी। ये टीम कनाडा और मेक्सिको की तरह क्वालिफाई होना चाहेगी अपनी सरजमीन पर। यूएसए का सामना बोस्निया से होगा। यह टीम पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंची 3-1 से कतर को हराकर। एडिन जेको की टीम यूएसए वर्सेस बोस्निया कल सुबह 4 बजे।
0: इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, याश्ना मिश्रा के साथ।
2: हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर है। इसके अलावा कल सुबह से दक्षिण से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को आसमान साफ रहेगा। कल सुबह पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:46 पर, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी आविका भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू लोह के अबूबासमें, एवेन्यू लोह के अबूबासमें 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव बंधुआ, जिन्हें राजीव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्वेव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। एवेन्यू कोडेगा दस्तानी रोजिल में, पैंसठ साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री वकील जगोनित, जिन्हें कुकू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती स्वस्ति जगोनित के घर स्थानीय रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोव्यू शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9। जकारोंडा स्ट्रीट ग्रैंड रिवियर नॉर्थ वेस्ट में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वीना राजश्री मुतुवीरेन, जिन्हें पैदाश नाम भोला, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर ग्रैंड रिवियर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैं पियर बॉम्बुक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रू सैं मारी ले कोर्नू सैं क्वामे 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती गोपुल, पैदाश नाम डॉवीज और जिन्हें सीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर सैं क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दीपत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। La Croisée Chebel, la petite rivière, 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमला देवी बीपन, जिन्हें कमला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनके बेटे आनंदत रामा के घर पुचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:45 AM। रुद्बाशेरी मुकामे 69 साल

0: की 69 ईयर्स ओल्ड की श्री सूरजलाल सोनिया, श्री सूरजलाल सोनिया जय विजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी अमरावादी सोनिया के घर पोशरी मौका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 10 बजे सियाकोस्टा उसकी शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो अत्यानी है। कौशलो शमे ग्रोनियमे 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्री राजाना नागाया जिन्हें धर्मानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ममिता नारायण के घर शमेग्रोनिय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्य दिगालिक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 9 मोसेलमा माउंट पॉम्पलीमुसेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री ब्रेमानंदा मांगापति जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले रविवार को सुबह 10 बजे उनके घर पॉम्पलीमुसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to Radio Masti.
2: RM2.
3: Radio Masti.
4: Allons chez Lulu.
5: Chez Lulu, Mojo, Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus La Vie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri, 32 portions à 122,50 €.
6: Lulu Hypermarché.

0: 2 Radio Musti.
1: Raftaar Vibes Filmy Rides
2: RM2

0: Welcome on a Radio Masti. This is our Raftar Vibes and we continue with the musical journey. 4 baje se Raftar Vibes on Radio Masti aur aaj ke liye Hansuni hai jo aapke saath hai. Really hope you enjoyed the afternoon show. Aur ab sham dhal gayi hai aur thand ki baat kare to kafi thand hai lekin still yahan par gaano ke saath we feel like very comfortable. और जो हमारे लेडीज हमारे फ्रेंड्स घर पहुंच गए हैं और अभी शुरू हो गया है द कुकिंग टाइम डिनर प्रिपरेशन शुरू हो गई है सो विश यू कुराश और रियली होप कि आज का मेन्यू बिल्कुल आपने तय कर लिया है क्या बनाना है मे बी आज थोड़ा सा सिंपल लाइट कई फ्रेंड्स तो अपने डाइट को मेंटेन करेंगे इट्स लाइक वीक डेज ना और वीकेंड्स दौरान हम तो बस चीट डे कर लेते हैं एक सैटरडे के लिए संडे के लिए ये आप डिसाइड करेंगे लेकिन कई फ्रेंड्स तो बस अपने फिटनेस को मेंटेन कर लेते हैं सो बॉन कुराज लगे रहिए वी आर हियर टू एनकरेज यू और म्यूजिक जो है हम चलाते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप एंजॉय करेंगे जो भी स्ट्रेस है वो बस आप दूर करेंगे दिल अगर भारी है तो दिल को हल्का बनाने के लिए हमारे म्यूजिक तो हम चलाते रहेंगे राइट द मैजिक ऑन रेडियो मस्ती गोज ऑन एंड यहाँ पर हंसनी है आपके साथ अप टिल 7 बजे तक
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
3: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

यहाँ पर द एंड ऑफ रफ्तार वाइब्स है, लेकिन म्यूजिकल शो का तो कभी एंड नहीं होता ऑन रेडियो मस्ती, इट्स ऑलवेज लाइक कंटिन्यूअस। यहाँ पर आ रही है हमारी प्यारी सी गिनीशा लेकर द नेक्स्ट शो, दैट विल बी आज का इवनिंग लाउंज, सेटिंग द मूड विद मोर सूदिंग मेलोडीज एंड रोमांटिक गाने, तो यहाँ पर उनका साथ रहेगा अब, जबकि मुलाकात तो हमारी होने वाली है और वो भी बहुत ही जल्द होने वाली है। सो स्टे सेफ, हंसनी की तरफ से वी डू विश यू अ ग्रेट टाइम, अ ग्रेट इवनिंग अहेड।

बिल्कुल जी, ऑनर रेडियो मस्ती आपके इवनिंग लाउंज यहीं से शुरू होता है, आपके और हमारे बीच में ही। और मैं हूँ गिनिशा, जो आ गई हूँ साथ देने के लिए आपके इस खूबसूरत सी रोमांटिक सफर में रात के 9 बजे तक। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार जी, और गिनिशा का प्रणाम। कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? स्टूडियो की घड़ी में 7:06 हो चुके हैं। आई रियली होप दैट एवरीवन इज हैविंग अ ग्रेट एंड अ गुड इवनिंग। वैसे अगर आप ज़्यादा थके हुए हो, हम तो कहेंगे कि अगर अभी अभी घर पहुँचे हैं, सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय सम गुड म्यूजिक, अ गुड मोमेंट फॉर यू। सम मी टाइम ज़रूर होना चाहिए ना लाइफ में, जहाँ पे आप थोड़ा रिसोर्स कर सकते हैं अपने आप को। दिस इज़ वाई वीव गॉट यू द बेस्ट सूदिंग म्यूजिक टू टच योर सोल। और वैसे कि भी आपको पता है, ऐसे खूबसूरत से शो में जब भी हम आते हैं, रोमांटिक गानों की बरसात हो जाती है, और आप और हम जैसे प्यार करने वाले इसमें भीगने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बस यूँ ही साथ देते रहिए, और अपना डेडिकेशन जो है, दिल की बात जो है, यानी कि अगर आप किसी को आई लव यू कहना चाहेंगे, आई मिस यू कहना चाहेंगे, किसी का जन्मदिन है, यू वुड लव टू सेलिब्रेट इट हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती। सम लवली कपल्स आर सेलिब्रेटिंग आवर देयर वेडिंग एनिवर्सरीज, यू वुड लव टू मेक देम फील थोड़ा सा और स्पेशल ऑन रेडियो मस्ती। सो द नंबर इज 5499124-1294 पर आप हमें अपने दिल की बात लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए जी, ये अगला गाना खास कर उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं। और लाइव एंड डायरेक्ट अगर बात करनी हो तो 402-80-35

0: आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए ऑन आवर वन टू रेडियो मस्ती. वैसे और एक प्यारी सी शाम में ही आप सभी लोगों का तो हमने स्वागत कर लिया है. बिल्कुल हम है निशा जो साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपका इवनिंग लाउंज यानी कि रेडियो मस्ती पर एक ऐसा शो जहाँ पे दिल की बातें दिल तक पहुँचा ही देते हैं और आपके दिल की बात हम समझ भी लेते हैं और जहाँ हर धड़कन को मिलता है एक सुर, एक एहसास को मिलती है एक कहानी. और आज की ये जो इवनिंग लाउंज है होगी मोहब्बत के नाम, उन यादों के नाम जो मुस्कुराने की वजह बन जाती हैं और उन ख्वाबों में ये उन ख्वाबों के नाम भी है जो सिर्फ दिल दिल ही समझता है. तो चलिए जी सौंदर्य का थोड़ा थोड़ा सा ढाल कीजिए टू टॉक टू अस लाइव एंड डायरेक्ट. हेलो जी नमस्ते.
1: हेलो.
0: ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ.
1: कैसे जी, कहाँ थी आप?
0: मैं तो कर रही थी किसी का इंतजार.
1: जी आप अपने को विश कराते हैं?
0: नहीं जी, हम तो यही नॉर्मली मैं शो करती हूँ ना 4-7 और अब तो 4-7 बजे सुन लेना रेडियो, मैं तो यहीं पे हूँ.
1: मैं सुनता हूँ आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ मगर ये जो प्रोग्राम इस टाइम का है जो तो बहुत बढ़िया है.
0: मतलब कि रोमांटिक गानों की शौकीन हो आप. तो सब कुछ बढ़िया है राजेश जी, आपकी फैमिली सब ठीक है?
1: बढ़िया है और थोड़ा ठंडी है बट.
0: ओहो, ये मुझे मैं बताना कि त्रियोली में ठंडी है. आप हमारे यहाँ पे आ जाना फिनिक्स में, पता चलेगा आपको
1: वहाँ तो आदमी को कॉफी पीना चाहिए.
0: हम तो जैसे यूरोप में रहते हैं ना.
1: हाँ जी
0: हाँ जी.
1: तो मैं एक गीत मांगना चाहता हूँ.
0: बिल्कुल, कौन सा गाना?
1: फिल्म है रॉकी.
0: ओके, गाना
1: क्या? यही प्यारे
0: हैं हाँ,
1: बिन तेरे लगता नहीं वक्त गुजरता नहीं
0: क्या तो यही
1: हो सके तो डाल देना.
0: ठीक है, क्यों नहीं हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, जरूर कोशिश करेंगे प्ले करने
1: तो
0: के लिए.
1: निशा जी आपको भगवान लंबी उम्र दे, आपके वॉइस को भी खूब मीठा.
0: थैंक यू जी. थोड़ा सा हम थक गई हैं लेकिन फिर भी हम आ गए आप लोगों का साथ देने के लिए.
1: हाँ जी, यही तो हम चाहते हैं.
0: ओके, तो हम आते रहे.
1: लोग आपके आपके आवाज सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं.
0: थैंक यू आप लोगों. एक्चुअली
1: ये
0: आप लोगों
1: लोग फोन करेंगे आपको.
0: बिल्कुल, ये आप लोगों का प्यार होता है जो हमें खींच के लेके आते हैं कभी कभी रात को.
1: आप प्यार बांटते हैं तो प्यार मिलेगा ही ना.
0: बिल्कुल जी, जो बोलते हैं ना, जो आप बोलते हैं वही आपको मिलेगा. अगर आम के पेड़ लगाया तो आपको आम ही मिलेगा ना.
1: हाँ जी, आप प्यार बांटते हैं इतनी मिठास से तो हर आदमी को मिलेगा ना.
0: तो मेरा मानना है ना मेरा मानना है ना भाई, लाइफ में ना हमेशा हमेशा प्यार बांट लेना चाहिए. मैं नहीं बोलती हूँ कि सामने वाला अगर कुछ नफरत बांट रहे तो आपको भी प्यार देना चाहिए, लेकिन प्यार से समझाना चाहिए क्योंकि दुनिया जो है ना प्यार से ही चलती है और कुछ नहीं.
1: अगर प्यार नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता.
0: बिल्कुल, अगर प्यार है, प्यार है तो सब कुछ, प्यार है तो सब कुछ है, अगर प्यार ना हो तो कुछ भी नहीं. इसलिए हमेशा प्यार बांटते
1: नहीं है ना.
0: लेकिन यही तो ना मैं बोल रही हूँ ना कि प्यार से समझा देना चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाता है इंसान को.
1: रेडियो में जितना प्रोग्राम प्यार के बारे में बोलते हैं मैं जो सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आदमी क्यों समझ नहीं रहे हैं.
0: पता है जिस दिन इंसान को समझ में आएगा ना कि नफरत में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ प्यार में ही रखा है और प्यार से ही ये दुनिया चलती है, तो ये दुनिया बहुत अच्छी जगह बनेगी.
1: रिग्रेट है, रिग्रेट.
0: वो तो है, लेकिन मेरे जो यहाँ हमारे जो शो है, हमारा ये जो रेडियो स्टेशन है, रेडियो मस्ती का जो फैमिली है, यहाँ पे नफरत के लिए कोई जगह नहीं है. हम सिर्फ प्यार ही प्यार पाते हैं. बिल्कुल,
1: यस, ये तो बहुत खूब बोली आपने.
0: तो चलिए जी आपका ये. हाँ जी बताइए.
1: मैं तो बस आप ही लोगों को बात सुन सुन

0: सर मैं बहुत खुश होता हूँ।
1: फिर तब फिर आप अपने आप से सवाल करते हो क्या यही प्यार है?
0: Yes, of course.
1: Oh my God. चलिए राजेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
0: bye-bye.
1: और बाय बाय, अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना, फैमिली वालों का भी ख्याल रखना, और एक और फोन कॉल हम जरूर लेना चाहेंगे 402-8035 डायल कीजिए टू टॉक टू अस लाइव एंड डायरेक्ट। तो चलिए जी थोड़ी देर में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो कॉलर है। फिलहाल के लिए ये गाना आपके नाम, हमारे प्यारे राजेश जी के नाम।

0: 101.2 Radio Masti.
1: इवनिंग लाउंज में सारे म्यूजिक लवर्स और जितने भी शेयर लवर्स हैं सबका स्वागत हमने कर लिया है. फिलहाल के लिए टॉल दोस्त वर्किंग हम उनको विश करना चाहेंगे बो को आज. आई नो ठंड का मौसम है, मन तो नहीं कर रहा है कि काम करे, लेकिन कम वक्त करना पड़ता है काम. और साथ देने के लिए तो हमेशा रेडियो मस्ती हाजिर है. वी हैव सच लवली एंड रोमांटिक ट्रैक स्पेशली फॉर यू माय डियर लवली पीपल आउट देयर. ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना आज, ऐसे ठंडे मौसम में बोलते हैं कि प्यारा और भी जवां होता है. क्या ख्याल है आपका? तो चलिए जी डायल कीजिए 402 85 402 85.

0: Dal KJ to talk to me live and direct. और फिलहाल के लिए I've got you, your lovely dedications. और अगला गाना जो है हम dedicate करना चाहेंगे अरशद के लिए, and that's coming from Baby Rebecca, जो बोलते हैं वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. एक गाना हो जाए, ये जवानी है दीवानी इलाही है, लेकिन इलाही का जो गाना है इट्स अ बिट टू हाई पिच फॉर दिस रोमांटिक शो. मिस्टर पृथ्वीराज, विजया, अर्जुन एंड अर्चना जो साथ दे रहे हैं. अगला गाना खासकर आप लोगों के नाम और 4-2-85 डाल कीजिए. हेलो जी, नमस्ते.
1: नमस्ते बहन जी.
0: नमस्ते भाई साहब, आपका नाम?
1: मैं विश्वानंद गंजी पापाई से बोल रहा हूँ.
0: कैसे हो आप? ठीक हो?
1: आप कैसे हैं?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताइए आपका दिन कैसा रहा? हाँ, अभी काम पे हो, सो कुरांश दियो. क्या कहाँ पे काम करते हो, क्या करते हो लाइफ में?
1: गार्डियन काम करता
0: हूँ. अभी खैर इस ठंड के मौसम में रात काटना बहुत मुश्किल होता है ना?
1: बहुत.
0: तो आपको हमारी तरफ से बोन कुरांश और हमारी पूरे मस्ती फैमिली की तरफ से, और आप बस अपना रेडियो साथ रखिए, ऐसे वक्त गुजरता जाएगा, कट जाएगा. ठीक है, बताइए.
1: एक गीत मांग रहा हूँ आप.
0: बिल्कुल, कौन सा?
1: प्यार ही प्यार, मेरे पत्नी के लिए संगीता.
0: कौन सी मूवी का गाना
1: और
0: है?
1: मेरे बेटी के लिए सैयद खुशी, और बैशनी के लिए.
0: मूवी का नाम क्या है भाई?
1: प्यार ही प्यार.
0: प्यार ही प्यार मूवी का नाम ही है, और उसका जो टाइटल ट्रैक है वही
1: प्यार ही प्यार है.
0: प्यार से प्यार, चलो ढूंढती हूँ. ठीक है,
1: ओके.
0: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया भाई, और बस सबों को आज दी. और जितने भी गार्डियन जो हैं लेट नाइट तक पूरी पूरी रात काम करते हैं, तो अगला गाना आप लोगों के नाम है. ऋषि विदेशी जी जो हैं, अगला गाना सारे और एम टू लिसनर्स के लिए. एंड मूडी गर्लफ्रेंड है आपका, हुज बर्थडे इज ऑन 2nd of July, कल यानी, तो एडवांस में उनको हैप्पी बर्थडे, और आप चाहते हो कि एक प्यारा सा जिंगल हो जाए, तो हियर वी गो.

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन RMTU रेडियो में से। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 8 PM।
1: RMTU रेडियो मस्ती,
2: The time is brought to you by
3: McDonald's, Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik, Gel Air Freshener. Freshness, anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
1: You're listening to a Radio Musti.

0: Morning Lounge.
1: RM2.
2: Radio Musti.
3: वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर इवनिंग लाउंज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। 8:04 हो चुके हैं। हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वो फिर से एक बार आप लोगों को विश करना चाहूँगी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। सो माय डियर लवली पीपल, बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। एंड टू ऑल दोस जो अभी काम पे हैं, कुआश टू यू, कीप गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग। हम हैं ना आपका साथ देने के लिए। 5499124 पर आप बस हमेशा अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते रहना और आपके दिल की बात पहुंचाएंगे आपके चाहने वालों तक ऑन रेडियो मस्ती।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में ये खास खूबसूरत सा नगमा हमने पेश किया है, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। वैसे जब ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं ना लाइफ में, जब हम अपने आप से सवाल पूछने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो बस इस सवाल का एक ही जवाब होता है, जब आप अकेले में मुस्कुराने सा लग जाते हैं, किसी के नाम सुनते ही आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाते हैं, दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, चलते चलते बस उनकी ही यादों में आप खो जाते हैं। हम इतना तो नहीं कहेंगे कि ना भूख लगती है ना प्यास, क्योंकि लगती है, इतनी लगती है कि बस मन करता है कि उनके साथ बैठ के हम खाना खाएं, तभी पेट भरेगा, और जब पेट भरेगा दिल भी भरेगा प्यार से। इस खूबसूरत से एहसास को हमने नाम दिया है प्यार का, प्यार इश्क और मोहब्बत। छोटा सा शब्द लेकिन दुनिया में कितने बड़े मायने रखते हैं, और देखा जाए कि ये पूरी दुनिया इसी से चलती है दोस्त, प्यार से, मोहब्बत से और इश्क से। बिना प्यार के ये कुछ हो भी नहीं सकता इस पूरे संसार में। तो चलिए जी, अगर प्यार की बातें हम कर रहे हैं, 402-435 पर फोन आ रहा है हमारे ये प्यारी से सुनीता जी का। हेलो जी, नमस्ते।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: निशा, नमस्ते, कैसे हो बहन, आप ठीक हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। आप बताइए, आप आज काम पे गए थे?
1: हाँ, आज काम पे गए थे।
0: कैसा रहा दिन? ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
1: अच्छा रहा, लेकिन बहुत थकान थकान काम है।
0: तो आप ना अभी आराम, आपने डिनर खा लिया, खाना खा लिया आपने?
1: नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं एक गाना मांगूंगी।
0: ओ, तब पेट क्या, मैं तो बोलती हूँ दिल भी भरेगा आपका। और आपकी तबीयत ठीक है ना बहन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में?
1: सब बढ़िया चल रहा है, भगवान की दुआ से।
0: वेरी गुड। आप बताइए। मेरा बस
1: पैर ठीक हुआ,
0: मेरा पैर ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी हम बिल्कुल ठीक है, और हम बस आ गए हैं आपका साथ देने के लिए।
1: हाँ, अच्छा है, और ख्याल रखना।
0: बिल्कुल, आपकी दुआ है, आपकी प्रार्थना है हमारे साथ।
1: हाँ, क्योंकि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, सुनते हैं वो बीमार हो गया, वो हमें बात करने को नहीं मिलती है। आदत ही बन गई है बात करने के लिए।
0: ओहो, देखा मैं, कितनी
1: बिल्कुल नहीं अच्छा लगता,
0: गिनने कितनी गंदी आदत बन गई है सब लोगों की, सब ढूंढते रहते हैं उसको।
1: बहुत बहुत वो आते हैं, हमें अच्छा लगता है बात करते हैं, लेकिन वो नहीं बात करते हैं, बाद में चला जाता है, तब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता।
0: चले, हम हैं आपके लिए, हम आते रहेंगे कभी कभी। बताइए कौन सा गाना सुनना है बहन?
1: मैं एक गाना मांगना चाहती हूँ, मालूम नहीं आप बजा सकेंगे या नहीं, हो सके तो भर तक मिलन का गाना।
0: मिलन,
1: मिलन का गलन मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना।
0: ओहो,
1: खुश हूँ। हाँ, ये गाना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है,
0: इसमें
1: सुनील दत्त है और नूतन है।
0: ठीक है, और ये गाना किसके लिए?
1: हो सके तो भर तक ये गाना बजा देना, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए,
0: आपके
1: टीम के लिए, मेरे सभी फैमिली के लिए।
0: ओके,
1: मेरे नाती पोती सभी के लिए, बहू बेटी दामाद बेटा सभी के लिए, जितने कोई सुन रहे सभी के लिए।
0: ठीक है जी, अभी ढूंढती हूँ ये गाना,
1: इंतजार करूंगी ये गाना के।
0: और अगर ये गाना नहीं मिले तो कौन सा गाना दूसरा,
1: यानी कि कौन सा गाना, रोटी कपड़ा मकान का गाना बजा देना, बाकी कुछ बादशाह था महंगाई मार गई।

सुनते हैं तो दिल में कुछ कुछ सा होने लग जाता है। वैसे शाम की ठंडी हवा में उसी का एहसास घुल जाए, हर धुन में उसी का नाम खिल जाए, जो बात लफ्जों से कभी कह ना सके, आज वो हर गीत जो है दिल तक पहुंचा देता है। बिल्कुल जी, तो तैयार हो जाइए खूबसूरत सी ये जो म्यूजिकल सफर है चल रहा है आपके और हमारे बीच में, टू फील ईच एंड एवरी बीट जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जहां बजेंगे आपके पसंदीदा रोमांटिक गाने जो कभी प्यार का इजहार करते हैं, कभी यादों को फिर से ताज़ा कर देते हैं। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और दिल को बस महसूस करने दीजिए। ये है आपका इवनिंग लाउंज, जहां हर गीत के साथ दिल और भी करीब आ जाता है जो आपके दिल में बसते हैं। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आपका होता नेक्स्ट वन जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू याले शाम फ्रॉम सुरीनाम, जो साथ दे रहे हैं आपके फैमिली के लिए। Hey Guinea, you're working night shift. I just want to dedicate a beautiful song for the cardiac unit team. के लिए आपने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा, ओ बिंदिया, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है तुम कौन से वाले हॉस्पिटल में काम करते हो माई डार्लिंग। तो चलिए बिंदिया जो हैं, ये अगला गाना आपके लिए और आपके टीम के लिए, कुराज टू यू। एंड गुड इवनिंग गिनी, कैसे हो? माई डॉटर ईशा वॉन्ट टू टेल यू आर सो स्वीट, ओ हो आई एम स्वीट, थैंक यू सो मच। एंड शी जस्ट वॉन्ट टू आस्क, एक गाने मांग रही हैं फ्रॉम द मूवी सैयारा, शी इज़ हेल्पिंग मी कुकिंग फराठा, गर्म गर्म फराठा बन जाए ना ऐसे मौसम में तो बात ही बन जाए, सो ऑफ कोर्स थोड़ी देर बाद। एंड कृष्टि फ्रॉम रिविया डी क्रियोल जी, और कृष्टि जो हैं वो हमारा साथ दे रही हैं, तो ये अगला गाना खासकर आपके नाम कृष्टि और हस्बैंड विक्रम के नाम और आपके ट्विंस जो हैं कौशिक और कौशल के लिए, ऑल्सो मेरे लिए, दैट्स अ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे सुया के लिए, बिहारी ऑफ कंगोमा, थैंक यू सो मच। आज आपके बेटे विकी एंड बहू कीर्ति की वेडिंग एनिवर्सरी है, सो कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ देम। मामा सुया और पापा लाल देव की तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू देम, और बस आप दोनों जो है हमेशा यूं ही साथ रहे, किसी की नज़र ना लगे। किसी ने पूछा आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माई ब्यूटीफुल। अगला गाना हमारे टीम के लिए, आपके जॉन संजीव के लिए, उसको बोलना चाहेंगे आई लव यू बहुत ज़्यादा, क्या करूँ दिल ये दिल उसी के नाम लेती है, ही इज़ माई जॉन, दिस लव कैन नॉट बी डिस्क्राइब। ये है खैर जो भगवान ने बनाया है, सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओपनली आई एम सेइंग ऑन एयर, यस आई लव यू संजीव, मैं नहीं बता रही हूँ, ये आश बता रही हैं आपको, दैट्स सो स्वीट। देखा ऐसे ही हम माहौल क्रिएट करते हैं कि आप अपने दिल की बात बेझिझक बता देते हैं पूरी दुनिया के आगे, दैट्स सो स्वीट। हे कैसे हो आप, हम बिल्कुल ठीक है अनिता जी फ्रॉम फिकॉन फ्लैग। और अगला गाना आपके जीजा जी धनराज बिसेसो के लिए, आज उनका जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे ब्रदर इन लॉ राज और सिस्टर इन लॉ अनिता, भतीजे अंतेश अंकुश बहुमनीषा सीमा पोती हिमेशा आद्या पोते अंश और सभी परिवार की तरफ से ये अगला गाना खासकर आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, I've got your beautiful song right now and I just want you to enjoy it। और बाकी जितने भी हमारे लिसनर्स आ दे रहे हैं, ये रहा आपके नाम।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। भाई 9 तो बज चुके हैं और शहर धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है ये अभी शुरू हुआ है। यानी कि अगले 3 घंटे बॉलीवुड के कुछ कमाल के गाने, कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन आपके साथ जुड़ने वाला है। एक एहसास और गानों को फिर से सुनने की प्यास ये चलती रहेगी जिनको हम रोज महसूस करना चाहते हैं। तो बस वॉल्यूम बढ़ाइए, साथ देने का वादा कर लीजिए और अपना ये सफर शुरू हो गया।

अच्छा, कभी सोचा है कि हम खुशी को हमेशा किसी बड़ी अचीवमेंट से क्यों जोड़ देते हैं? कभी एक छोटी सी मुलाकात, किसी अपने का साथ, अरे गर्म चाय या बारिश की खुशबू, या किसी अपने का एक छोटा सा मैसेज दिन को बना देता है ना। आज बताइए, आपकी लाइफ की वो कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपको कभी फेल नहीं करती? किसी का कुछ कह देना प्यार से, किसी का आपके बारे में सोच लेना, है ना।

हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता एफर्ट जरूर मांगता है। कभी ईगो को साइड में रखकर, नहीं लेफ्ट हो या राइट कहीं भी साइड में रखकर, बस ये पूछ लीजिए कि कैसे हो, बोलकर देखिए, हो सकता है कि वो भी इंसान इसी बात का इंतजार कर रहा हो। अगला गाना आप सबके नाम।

जो दोस्त इस वक्त स्टेयरिंग संभाले हुए हैं या ऑफिस की लेट नाइट शिफ्ट से घर लौट रहे हैं, ये गाने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, आपके हम सफर बनकर आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार। सेफ ड्राइव कीजिए, स्पीड से ज्यादा जरूरी है घर तक मुस्कुराते हुए पहुंचना एक अच्छे मूड में।

0: कभी कभी नो बोलना भी सेल्फ केयर होता है। हर किसी को खुश करते करते अगर आप खुद थक गए हैं तो थोड़ा रुकना भी जरूरी है। अपनी पीस को प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि वही आपकी असली स्ट्रेंथ है।
1: एक हो

भाई वक्त गुजरता जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। नहीं, आज या कल सुबह बिना किसी रीजन के उनसे दो मिनट बात जरूर कीजिए। कभी कभी उनकी सबसे बड़ी खुशी सिर्फ आपकी आवाज, आपका साथ है।

0: You're listening to RM2, a radio musty.
1: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
2: आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंद्रनील ठाकुर। नील?
1: जानती हूँ।
2: आप बेस्ट लॉयर हैं, आप मेरा केस लड़ो ना, वरना वरना माया के पापा गुनगुन को ले जाएंगे।
1: तो मैं क्या करूँ?
2: आप अपने बेटे को प्यार नहीं करते
1: क्या?
2: अगर आपके बेटे को कोई ले जाए तो आप बेस्ट लॉयर नहीं ढूंढेंगे?
1: मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती। Now please go from here.

लाइफ हर किसी को सेकंड चांस देती है, बस कभी नए मौकों पे रुक मत जाइए क्योंकि और मौके आने अभी बाकी हैं। अगर कुछ पहले प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो हो सकता है कि कहानी अभी और खूबसूरत बनने जा रही हो।

कुछ लोग डायरी लिखते हैं, कुछ वॉक पर जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ हेडफोन्स लगाकर दुनिया भूल जाते हैं। शायद इसलिए म्यूजिक को दिल की लैंग्वेज कहा जाता है। आपका कंफर्ट जोन भी म्यूजिक है, तो म्यूजिक जोन में, म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत। सीट बेल्ट लगा ली ना?

आजकल स्टोरी सबकी कलरफुल होती है, लेकिन असली लाइफ में हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है। इसलिए कभी किसी की हाईलाइट रील देखकर अपनी जर्नी को जज मत कीजिए। आप अपनी कहानी के हीरो हैं।

भाई समय की एक खूबसूरत बात पता क्या है, ये कभी रुकता नहीं, इसलिए बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आज मुश्किल है तो यकीन रखिए कल एक नया मौका लेकर जरूर आएगी जिंदगी।

सोने से पहले बस एक छोटा सा प्लान बना लीजिए, कल एक अच्छा काम जरूर करेंगे। किसी की हेल्प, किसी को कॉम्प्लीमेंट या सिर्फ एक जेन्युइन स्माइल, छोटी छोटी बातें एक तो जिंदगी को

बस देखते ही देखते यह हसीन रात अपने अंजाम तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि गानों का जो सिलेक्शन है आपको पसंद आया होगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर या फिर एक साथी बनकर आपके साथ जरूर रहा होगा। जिंदगी के प्लेलिस्ट में हर मूड के लिए एक नया गाना जरूर होता है। मैं चलता हूँ, मिलूंगा एक बार फिर से जल्द ही। बस यादों में याद रखना, और जिससे पहले कि आप हमें मिस करना शुरू करें, एक बार फिर से वापस RM2 पर। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. I'm not

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: है। भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: RM2 Radio Masti.

फिर कोई बाप